के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

अच्छी जानी के घोड़ी सुखारी बहुविधि सेवा करी तुम्हारी अति प्रसन्न है तुम वरदीना मातु पुत्र हित जोत पतीना।

हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा। आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि भगवद गीता एक बहुत सुंदर चीज हमें बताती है। ये हमें बताती है कि आप जीवन में कभी भी आपका रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, परंतु हमारे साथ एक छोटी सी परेशानी है कि हम रिजल्ट के लिए ही कार्य करते हैं और इसीलिए आगे जाके फ्रस्ट्रेशन मिलता है। जैसे कि किसान अपना खेत में बीज बो सकता है, परंतु वो वर्षा नहीं ला सकता। इसीलिए हम अपने कर्म को बहुत ईमानदारी से कर सकते हैं, परंतु जो रिजल्ट है वो भगवान फाइनली हमें देते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा, इसको हमेशा याद रखें कि डू योर बेस्ट एंड लेट कृष्णा डू द रेस्ट। हरे कृष्णा।

ऐसे शुक्र करूं तेरी रहमतों का, ऐ खुदा मुझे मांगने का सलीका नहीं है, पर तू देने की हर अदा जानता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: सुंदर स्त्री हीरा है, लेकिन नेक स्त्री हीरो का खजाना है, ये कहना है शादी का। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूँ गगन और प्रोग्राम है शारदा सवेरा।

हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूं कि ईश्वर पर विश्वास रखो, बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Film making एक creative field है, और यदि आप creative सोचते हैं तो ये field आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें Sharda University के Sharda School of Media, Film and Entertainment Department में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी को जीने की बातें करते हैं, खुश रहने वाली बातें हम आपके साथ साझा करते हैं, और बहुत कुछ खास होता है इस सामुदायिक रेडियो स्टेशन के माध्यम से। ये सारी बातें जन जन तक हम पहुंचा रहे होते हैं। तो 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं कि आपको अपने शहर ग्रेटर नोएडा का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कैसा लगता है। इसके अलावा 8fm@sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर बता सकते हैं। जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाती है जब हमारे साथ हमारे टीचर जुड़ जाते हैं, वो टीचर जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमें तराश रहे होते हैं, हमें एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी बातें वो हमसे साझा कर रहे होते हैं, हमें बता रहे होते हैं। पढ़ने पढ़ाने की जो बातें वो मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि BGMC की पास आउट स्टूडेंट हमारे साथ आज जुड़ रही हैं, और उनका जो नाम है वो है प्रियंवदा। 2016 में इन्होंने यहाँ से कोर्स किया जिसका नाम है BGMC। तो प्रियंवदा, आपका फाइनली सुरुशादा 90.8 FM पर बहुत बहुत स्वागत है।
5: थैंक यू सो मच सर।
4: कैसा फील कर रहे हैं? काफी टाइम के बाद आप अपने कैंपस में आए हैं और अपने स्कूल में आए हैं, अपने टीचर से आप मिल रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं?
5: सर, स्कूल वापस आके तो अच्छा लगता ही है, टू मीट ऑल द ओल्ड टीचर्स हु बीन देयर। कुछ टीचर्स तो आई थिंक हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम हियर, एंड बाकी जो टीचर्स यहाँ पे, आई ऑलवेज हैड अ वेरी स्पेशल रिलेशन विद ऑल ऑफ देम, एंड आई यूज टू वर्क अ लॉट। मैं प्रैक्टिकली 3 साल मैंने फैकल्टी रूम से ही अपनी पढ़ाई की।
4: ओह ग्रेट,
5: बिकॉज़ वहाँ पे आई यूज टू बी द एडिटर फॉर द न्यूज़पेपर आल्सो शार्डन्स की।
4: एक्सीलेंट,
5: तो मैं प्रैक्टिकली वहीं पे रहती थी।
4: मुझे यूं है कि मैं बहुत चक्का क्यों रह गया, इसके पीछे एक वजह है कि मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि उनको पता ही नहीं होता कि फैकल्टी रूम कहाँ है। मतलब आपने वहाँ अपनी कुर्सी जमा ली और लोगों से मिलते रहे, बात करते रहे, तो क्या क्या सीखा उस दौरान आपने?
5: सो फर्स्ट थिंग व्हाट आई लर्नड वाज द कमिटमेंट टुवर्ड्स योर वर्क, कि कुछ भी हो, जो भी काम हो, 100% वही उसी को करना है विद फुल फोकस। एंड लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स. यहाँ पे टीचर्स आर वेरी वेलकमिंग फॉर स्टूडेंट्स टू मेक मिस्टेक्स एंड टू लर्न फ्रॉम
4: इट,
5: बिकॉज वो आई थिंक सबसे बड़ी सीख होती है. अगर अपनी मिस्टेक्स से आप खुद सीख के आगे बढ़ो, तो जो 3 साल मैंने यहाँ पे अपना सीखा है, वो माय टीचर्स हैव बीन माय कांस्टेंट सपोर्ट. इनफैक्ट ऑल माय टीचर्स, स्पेशली एक अभिषेक सर थे, अशरफ सर थे, इन्होंने ही मेरे को पुश किया था यहाँ से बॉम्बे जाने के लिए.
4: ग्रेट. तो उनका एक्सपीरियंस कैसा?
5: उनके साथ सर सीखने को बहुत मिलता था. उनकी क्लासरूम ऐसे क्लासरूम नहीं लगती थी. इट यूज्ड टू बी मोर लाइक सिटिंग, टॉकिंग टू हिम, वर्किंग विद हिम. वो साथ में काम करते थे बच्चों के साथ, एंड लाइक वहां से उससे सीख बहुत अच्छी मिलती थी. टू एक इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर जो क्लासरूम में होता है, तो लाइक आई थिंक फॉर मी वो बहुत अच्छा सीखने का एक्सपीरियंस था.
4: अभिषेक सर से तो फोन पे बातचीत हो जाती है?
5: हाँ, अभिषेक सर से भी आई हैव बीन इन कॉन्टेक्ट उनके साथ, पर वो थोड़ा सा वो मतलब आप वो बहुत पुश करते हैं स्टूडेंट्स को टू द पॉइंट कि अगर उनको पता है कि व्हाट इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट, वो कितना आगे जा सकता है, तो उनसे तो प्रैक्टिकली हमेशा डांट ही पड़ती रहती है कि तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम लोग कुछ कर नहीं रहे हो.
4: अच्छा प्रेमदा, मुझे ये बताइए कि ये जो बहुत कुछ आपने सीखा अपने टीचर से, अपने कुलीग से, अपने दोस्तों से, मुंबई जब आप गए तो कितना काम आया? आपको लगा कि अगर काश मैं वहाँ ये सारी चीजें मिस कर देती तो मैं यहाँ जीरो से स्टार्ट करती. जो आपने सीखा यहाँ शारदा यूनिवर्सिटी से अपने टीचर से, कितना काम आया?
5: सब बहुत काम आया. इनफैक्ट मैं यहाँ पे जब मेरे को सेकंड ईयर में शारदंस का एडिटर बनने का मौका मिला था सेकंड ईयर से, सो मैं 2 इयर्स आई वाज द एडिटर हियर. मेरे को एक तो टाइमलाइन, हाउ टू वर्क विद इन अ टाइम लिमिट, एंड स्टार्टिंग जब मैंने एडिटर से की थी तो वहाँ पे भी मैंने स्टार्ट एज अ राइटर किया था. एंड आई रोट स्क्रिप्ट फॉर टीवी शोज, नॉन फिक्शन टीवी शोज. एंड फिर मैं जब क्रिएटिव फील्ड में गई तो एक सर वो जो फाउंडेशन यहाँ बनी थी
4: वो वहाँ काम आया,
5: वो बहुत वहाँ काम आया. इनफैक्ट उसी पे बिल्ड हुआ है मेरा करियर.
4: एक्सीलेंट. ये आंसर में इसलिए जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे पास कुछ इंटर्न्स आते हैं, बहुत कैजुअली ले लेते हैं कि हम यहाँ से पास आउट हैं, इतने फैमिलियर हो चुके होते हैं कि वो उस चीज को सीखना या समझना नहीं चाहते. आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि बातें अभी शुरू हुई हैं, लेकिन इस मैसेज को मैं अभी इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि इस बात का संबंध आपकी बात से संबंध है. तो क्या उनको कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो यहाँ सीखें, किस तरीके से अपने आप को आगे लेकर जा सकते हैं, क्या एक मैसेज होगा?
5: मैं अगर वो मैसेज बताऊं सर, इट इज एक्चुअली कि शारदा में यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न. आपको जिस डायरेक्शन में सीखना है, जो सीखना है, टीचर्स आर वेरी सपोर्टिव हियर. एंड टू द फैक्ट कि आप स्टार्ट करके यू कैन बिल्ड योर फाउंडेशन,
4: राइट,
5: कि आगे व्हेन यू गो इन द वर्ल्ड यू कंटिन्यू योर करियर, इट रियली हेल्प्स. एंड यू कैन फॉल बैक टू योर फाउंडेशन एनी टाइम. वापस आके यू कैन रीलर्न एवरीथिंग फ्रॉम दीज टीचर्स. दे आर दैट ओपन टू यू एज अ स्टूडेंट. एज अ पास आउट, आई हैव पास्ड आउट इन 2016. बट टू स्टार्ट लर्निंग, बट टू कम बैक टू द रूट्स एंड जस्ट टॉक टू द टीचर्स एंड लर्न, आई थिंक दिस इज द थिंग. क्योंकि लर्निंग, आई फील देर इज नो एज टू.
4: बिल्कुल आपने सही कहा कि जो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती. जब चाहे आप सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं. और अगर मैं समझता हूँ कि कहते हैं ना कि बुनियाद अगर आपकी मजबूत होगी तो उस पर आप इमारत को खड़ा कर सकते हैं. और आपकी बेशक इसमें कोई शक वाली बात है नहीं कि आपकी जो नींव मजबूत रही अपने टीचर्स के सानिध्य में, आपने बहुत कुछ नाम कमाया है, कमा रही है. सो लिसनर्स, मैं बताना चाहूंगा मेरे साथ जुड़ी हुई है प्रोड्यूसर हैं, आप डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, आप हैं प्रेमवदा. तो प्रेमवदा के साथ बहुत सारी बातें हो रही है. ये परिचय मैं इसलिए बताना भूल गया, लगा अरे नहीं आप नहीं तो स्टूडेंट है. प्रेमवदा, यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और आपके साथ जो बातों का सिलसिला है लगातार जारी है. सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुनो शारदा 90.8 एफएम. मैं हूं गगन आपके साथ. मेरे साथ हैं प्रेमवदा जो कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर हैं. सो कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम.

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरुशादा 90.8 FM। मीडिया क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है और कहा जाता है कि ये मजबूत स्तंभ है, और यहाँ स्टूडेंट आते हैं, अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि शारदा विश्वविद्यालय आपके लिए बाहें पसारे इंतजार कर रहा है। यहाँ का जो मास्कॉम है, यहाँ का जो स्कूल है, बहुत सारे स्कूल में यूँ कहें कि स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, और इसके बाद कहीं ना कहीं विदेश में, मुंबई में अपना योगदान दे रहे होते हैं। जैसे कि प्रेमवदा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि 2016 में यहाँ से पास आउट रही हैं, बीजीएमसी का कोर्स इन्होंने किया, इसके बाद मुंबई का सफर रहा, और उसके बाद जो मैं अभी थोड़ा ऑफ एयर मेरी आपसे बात हो रही थी, 2019 का रुख किया आपने विदेश की तरफ, ये फर्दर स्टडी के लिए आपको जाना हुआ या कुछ प्रोजेक्ट की वजह से जाना हुआ उधर?
1: 2019 में मैं गई थी जर्मनी फॉर अ वन ईयर कोर्स इन फिल्म मेकिंग। मैंने अपना मास्टर्स इन फिल्म मेकिंग किया है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स को एज अ स्पेशलाइजेशन लेके। सो एक साल का मेरा कोर्स था वहाँ पे, मेट फिल्म स्कूल करके एक फिल्म स्कूल है बर्लिन में, एंड वहाँ से आई हैव डन माय वन ईयर ऑफ मास्टर्स।
0: वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, वहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ का कल्चर और वहाँ के कल्चर में कितना जमीन आसमान का फर्क महसूस करते हैं, किस तरीके से पढ़ाई होती है, प्रैक्टिकल पे जोर ज्यादा दिया जाता है या थ्योरी पढ़ाई जाती है?
1: वहाँ पे प्रैक्टिकल पे बहुत फोकस रहता है। इनफैक्ट एज अ फिल्म स्टूडेंट वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप फिल्म एज अ ऑडियंस ना देख के, एज अ स्टूडेंट देख के उस पर क्या अपनी क्रिटिक आप दे सकते हो, वो आपकी थॉट बिल्डिंग करवाते हैं वहाँ पे। कि एक फिल्म को अगर आप देख रहे हो नॉट एज एन ऑडियंस बट एज अ फिल्म मेकर, एज अ स्टूडेंट, तो टेक्निकलिटीज पहचानने का और डिफ्रेंशिएट करने का आप में वो टैलेंट एंड वो स्किल वो लोग डिवेलप वहाँ पे बहुत कराते हैं।
0: ग्रेट। उसके बाद फिर जो आप जर्नी रही,
1: yes.
0: वो कैसी जर्नी रही वहाँ, मतलब आपने कुछ प्रैक्टिकल वहीं किए, वहीं काम किया, या उसके बाद बैक टू पवेलियन या हिंदुस्तान आना हुआ?
1: जब मैं बर्लिन में थी, इन 6 months into my course, वहाँ पे तो लॉकडाउन लग गया था बिकॉज ऑफ द कोविड लॉकडाउन। तो फर्स्ट लॉकडाउन वाज वहाँ पे नोबडी न्यू कि क्या है, कैसे है, क्लासेस कैसे होंगी, क्या होगा। सो कपल ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पे मिलके, इनफैक्ट मेरा एक सीनियर है यहीं शारदा का, वो भी वहाँ पे था, हम दोनों ने मिलके एक फिल्म बनाई। एंड प्रैक्टिकल वी थॉट कि जो हमने अभी तक सीखा है 6 महीने में उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें। सो स्कूल से वहाँ पे भी बहुत सपोर्ट मिला इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट वहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ स्टूडियो, इन टर्म्स ऑफ वहाँ पे टीचर्स से डिस्कस करना इतनी नॉलेज वो कि हम ये फिल्म शूट करना चाहते हैं। सो वो सारा लेके वी मेड एक्सपेरिमेंटेड विद अ शॉर्ट फिल्म, 3 मिनट की फिल्म है, इट इज ऑन लाइक 1 take में हमने पूरी शूट करी है, एंड इट इज कॉल्ड कोल्ड मीट। वो लेके भी टीचर्स वर वेरी सपोर्टिव, जब हमने फिल्म उनको प्रेजेंट करी तो उन्हीं का आइडिया था कि अब इस फिल्म को लेके तुम थोड़ा फिल्म मार्केट एक्सप्लोर करो और सीखो। तो वो भी वहाँ पे बैठ के किया था कि हम लोग ने फिल्म फेस्टिवल्स में ये फिल्म डाली, फिर सीखा कि कौन सी मार्केट में कैसी फिल्म चलती है, क्या होता है।
0: तो किस लेवल पर वो फिल्म गई आपके?
1: वो फिल्म US में हैज वन अवार्ड्स एज बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म, एंड आई वॉज नॉमिनेटेड फॉर प्रोड्यूसर ऑल्सो इंडी फिल्म फेस्टिवल्स में इन लॉस एंजलिस। इंडिया में भी 2 film festivals, ग्लोबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और गोवा फिल्म फेस्टिवल में ये फिल्म हैज बीन सिलेक्टेड एंड हैज वन अवार्ड।

0: ओह ग्रेट, बधाई हो। आप जिस तरीके से बातें कर रहे हैं और मुझे बता रहे हैं, बहुत सादगी से बातें अपनी रख रहे हैं, अदरवाइज तो लोग ये कहते हैं कि आसमान में उड़ रहे होते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी बातें हमसे शेयर कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा या इसके आसपास की मैं बात करूँ, इस एरिया में दिल्ली एनसीआर में भी फिल्म फेस्टिवल्स होते रहते हैं, जैसे कि शारदा यूनिवर्सिटी में भी अभी KFF कुछ फिल्म फेस्टिवल हुआ था। ग्रेटर नोएडा के अलावा मैं बात करूँ, नोएडा में भी फिल्म फेस्टिवल हैं और आने वाले समय में यहाँ फिल्म सिटी आ रही है, तो क्या कभी कोई यहाँ अपनी फिल्म को लेकर आप आगे गए, एक बात, और दूसरी बात क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ जो फिल्म सिटी आ रही है कितना स्कोप होगा स्टूडेंट्स के लिए? दो बातें।
1: सर, ये फिल्म तो अभी फेस्टिवल सर्किट में चल ही रही है। मैंने इसका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, क्योंकि माई एम वॉज टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल फिल्म मार्केट इंडिया का, तो लाइक बींग एन इंडियन एंड बींग स्टूडेंट हेयर वर्किंग इन बॉम्बे, थोड़ा बहुत आइडिया तो अंडरस्टैंडिंग फिल्म मार्केट की थी, बट बाहर का अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए दिस फिल्म पर्पस वॉज दैट। अब आफ्टर द फिल्म फेस्टिवल सर्किट नेक्स्ट ईयर फिर ये फिल्म हम लोग यहाँ पे नोएडा दिल्ली में थोड़ा उसको
0: एक्सप्लोर करेंगे।
1: एंड इन टर्म्स ऑफ अगर यहाँ पे फिल्म सिटी आ रही है फॉर स्टूडेंट्स, आई थिंक ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू लर्न द बेसिकली प्रोडक्शन, फिल्म प्रोडक्शन जो हम पेपर पे सीखते हैं और जो हम फिल्म सेट पे सीखते हैं वो बहुत डिफरेंट होता है। एक फिल्म एटिकेट होती है जो सेट पे,
0: राइट,
1: एज अ प्रोफेशनल जब आप स्टेप इन करते हो फिल्म सेट पे, वो आई थिंक क्लासरूम के बियॉन्ड एक लर्निंग है।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: वो आप यहाँ पे ऑन पेपर विद टीचर्स जितना सीख सकते हो, बट व्हेन यू स्टेप इनटू दैट फिल्म सेट और व्हेन यू स्टेप इनटू लाइक इन अ प्रोफेशनल फील्ड, वो आई थिंक स्टूडेंट्स विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग जब यहाँ पे फिल्म सिटी बन जाएगी। इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, तो मतलब सबको बॉम्बे नहीं भागना पड़ेगा।
0: दिल्ली एनसीआर में बहुत अच्छा स्कोप रहेगा स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ से पढ़ रहे हैं, यहाँ से पास आउट हो रहे हैं। अभी आपने एक बहुत अच्छी बात छेड़ दी है प्रेमवदा, कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है जब आप फील्ड में उतरते हैं, मैदान में उतरते हैं, डायरेक्टर के साथ काम कर रहे होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं या कुछ और, उस समय बहुत सारी चीज़ें काम आती हैं। कि नो डाउट, जैसे आपने खुद कहा कि मैं यहाँ से सीख कर गई थी तो मुंबई में मुझे वो सारी चीज़ें काम आई। कुछ लोग तो जाहिर सी बात है कि अपने समय को ख़राब कर रहे होते हैं, 3 साल या 4 साल व्हाटएवर जो भी है, उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि मुझे पका पकाया मिल जाए। एक तो धैर्य की कमी होती है, दूसरा ये भी होता है कि वो सुनना पसंद नहीं करते। अगर टीचर, जाहिर सी बात है टीचर के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि स्टूडेंट सुनना नहीं चाहते, फिर वो डायरेक्टर की या असिस्टेंट डायरेक्टर की कैसे सुनेंगे? अगर वो सारी चीजें, यू कहें कि जो आप एटिकेट्स की बात कर रहे हैं, तमीज की बात कर रहे हैं, अगर किसी विद्यार्थी में वो सारी चीजें हैं, सुनने की क्षमता है, सीखना चाहता है, टाइम स्पेंड करना चाहता है, तो निश्चित तौर पर वो आगे बढ़ेगा। और जिस विद्यार्थी के पास ये सारी चीजें नहीं है, क्या कहना चाहेंगे?
1: अभी भी टाइम है
0: सीखने को।
1: बट वहां पे जाके आपको कोई दोबारा अगर आपने गलती करी कोई बैठ के समझाएगा
0: नहीं, समझाएगा, राइट,
1: ये एक चीज है। वहां पे अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी विद वन
0: मिस्टेक, किसी को मतलब नहीं है आपसे, राइट,
1: तो फिर वो आगे बढ़ जाएंगे, आप अपनी मिस्टेक जहां तक आप जब तक रियलाइज करोगे, फिर टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन वो थोड़ा एक डिफिकल्ट हो जाता है।
0: क्या कहना चाहेंगे शारदा यूनिवर्सिटी में, अपने स्कूल में काफी समय के बाद आप आए हैं, रेडियो स्टेशन उस वक्त आपका आपके सामने बन रहा था और आज आप रेडियो स्टेशन में हैं एक, और आपका एक साक्षात्कार मैं कर रहा हूँ, सो कैसा फील करते हैं अपनी कॉलेज में आकर, रेडियो स्टेशन में आकर, क्या कहना चाहेंगे फाइनली?
1: एक्चुअली सर, आई फील वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड कि जहाँ पे मतलब व्हेन हम लोग थे तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना एम्फेसिस ऑन अ फिल्म स्कूल, ऑन मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट नहीं था, एंड नाउ अब आके देख रही हूँ कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे हो गई हैं। सो आई फील लाइक एज स्टूडेंट्स वी मिस्ड आउट ऑन दैट। हम लोगों को हर चीज के लिए वी वर लाइक अपने से वो करते थे,
0: जी जी,
1: बट नाउ यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज देख के फॉर स्टूडेंट्स आई फील रियली हैप्पी एंड रियली प्राउड।
0: रियली नाइस। सो मैं भी यही कहूंगा आपकी बात का एक निष्कर्ष निकालते हुए कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इस अवसर का उनको फायदा उठाना चाहिए, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मुंबई जाना चाहते हैं या फ्रीलांस अपना कुछ काम करना चाहते हैं जो सीखने का मौका आपको मिल रहा है, जिंदगी शायद वो दोबारा आपको सीखने का मौका ना दे. और अगर आप किसी डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं तो धैर्य, पेशेंस होना बहुत जरूरी है. पैशन के साथ आपने उस पेशेंस को जब आप कैरी करके चलेंगे तो निश्चित तौर पर उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट जो आएगा, परिणाम जो आएगा, वो सुखद आएगा. सो प्रेमवदा, मुझे आपसे बात करके वाकई बेहद खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा. और खास बात ये अच्छी लगी कि जो आपने कहा वो मैंने पाया आपकी सादगी में. और मैं आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत दुआएं करता हूँ और सब कुछ अच्छा हो, बेहतर हो, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं.
1: थैंक यू सो मच सर.
0: सो लिसनर्स, आप थे हमारे साथ प्रेमवदा, जो कि एक प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं. ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर. इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं. सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरू शारदा 90.8 FM. मैं हूं गगन, मुझे दीजिए अनुमति. जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ गुजारते चले जाइए. ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत. टाटा बाय बाय, टेक केयर.
2: प्ले, क्या बात है.

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937770। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: जब तू इस घर में खुशियाँ बनकर आई।
1: तुम रहो स्वस्थ और सुरक्षित, हमको यही बात की चिंता सताई।
2: अरे कौन है वो जो हमको समझाए, कैसे करें हम इनकी देखभाल।
0: अरे चिंता ना करो अम्मा, मुन्नी अस्पताल में हुई है, इसलिए 7 बार हम इस घर के चक्कर लगाएंगे, नहीं रहेगी कोई कसर अधूरी। मुन्नी की जांच मैं करूंगी पूरी, जांचूंगी वजन और तापमान, रखूंगी आंख नाक और त्वचा का भी ध्यान, कितनी बार कब और कैसे अपना दूध तुम पिलाओगी ये मैं तुम्हें बतलाऊंगी। मुन्नी को छूने से पहले हर बार कैसे धोना है हाथ ये भी सबको सिखलाऊंगी। छोटी सी है मुन्नी, इसे तुम 7 दिन तक बिल्कुल मत नहलाना, सीने से लगा के रखना और कपड़े खूब पहनाना। 15 है खतरों के लक्षण, रखना तुम इन सब का ध्यान, देखते ही ये लक्षण 102 एम्बुलेंस बुलाना, तुरंत मुन्नी को SNCU ले जाना।
3: करती है पते की बात, ये तो सुघर सयानी है, बच्चे के होने पर ये तुम्हारे घर आनी है।
0: 1, 3, 7, 14, 21, 28 और 42 दिन मैं बच्चे की जांच करने आऊंगी, क्योंकि बच्चे की नियमित जांच से फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ। वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने से खास प्रोग्राम के माध्यम से। आज जिस सब्जेक्ट पर मैं बात कर रहा हूं वो इशारा करता है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, यानी कि हम बात करेंगे, हिंदी में कहा जाता है साइबर धोखाधड़ी और अंग्रेजी में कहा जाता है साइबर फ्रॉड। इससे कैसे हम अपने आप को बचा कर रखें, इससे अगर आपने अपने आप को बचा कर रख लिया तो यकीन मानिए कि रात को चादर तान कर आप सो सकते हैं, अदरवाइज रातों की नींद आपकी खराब हो सकती है। इसी के बारे में बातें करेंगे। डिजिटल माध्यमों, जैसे कि बात निकल कर सामने आती है कि इंटरनेट, स्मार्टफोन या कंप्यूटर का उपयोग करके की जाने वाली धोखाधड़ी है साइबर फ्रॉड, और जिसका उद्देश्य ये होता है कि पीड़ितों की निजी जानकारी को चुराना या उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाना होता है। इसके बारे में डिटेल में और बातें करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सुरुशादा 90.8 FM। आज का सब्जेक्ट है साइबर फ्रॉड।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि साइबर धोखाधड़ी के प्रति जन जागरूकता अभियान हम चलाते रहें, हम आपको अपडेट करते रहें। यही वजह है कि इस प्रकार के जो घोटाले, इस प्रकार का जो फ्रॉड है, उससे बचने बचाने के लिए हम आपको अपडेट कर रहे हैं। तो बात निकल कर ये सामने आती है कि धोखाधड़ी के मामले बड़े पैमाने पर हमारे सामने आ रहे हैं और भारत सरकार भी अलर्ट है। इसीलिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ मिलकर हम आप तक ये खास बातें पहुंचा रहे हैं। इस साइबर धोखाधड़ियों की जो बढ़ती घटनाएं हैं, उनका असर नागरिकों पर पड़ता है। उनके साथ धोखा होता है, उनके साथ छल होता है, उनके साथ फरेब होता है। और इस बुरे असर से बचने के लिए एक बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाने का प्रस्ताव किया गया है, यानी कि अवेयरनेस एक्टिविटी सुनो शारदा 90.8 एफएम के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और वो बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और चूंकि रेडियो स्टेशन का जो एक दायरा है, यानी कि आपका हमारा जो एक संबंध है, हम लोगों तक पहुंचते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बीच में पहुंचते हैं, अर्ध शहरी आबादी के बीच में पहुंचते हैं, शहरी आबादी के बीच में पहुंचते हैं, तो यानी कि एक ब्रिज का काम हम कर रहे हैं। और यही वजह है कि सुनो शारदा 90.8 एफएम आपसे कहता है कि इस प्रकार की जो धोखाधड़ी है, इससे आप अपने आप को बचा कर रखें ताकि आप सुरक्षित रह पाएंगे और आपके रुपए का कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा। ऐसी अपडेट के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 एफएम।

एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरी यानी गगन के साथ। आज मैं बात कर रहा हूँ साइबर फ्रॉड के बारे में, साइबर धोखाधड़ी से कैसे हम अपने आप को बचा कर रखें। और इस प्रकार की जो धोखाधड़ी है, बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं, लेकिन उससे पहले डिटेल निकल कर ये सामने आती है कि जो धोखेबाज लोग हैं, जिस तरीके का काम करते हैं, वो आर्थिक नुकसान आपको पहुंचाते हैं। और कई प्रकार की एक ठगी होती है, जैसे फिशिंग। इसके अंतर्गत होता क्या है कि फर्जी ईमेल या मैसेज भेजकर बैंक विवरण या पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी मांगना। दूसरी बात सामने आती है विशिंग और स्मिशिंग, यानी कि फोन कॉल जिसको विशिंग और एसएमएस इसको स्मिशिंग के जरिए बैंक अधिकारी बनकर ओटीपी या कार्ड की जानकारी वो लोग चुराते हैं, वो आपसे मांगते हैं। लेकिन जो भोले भाले लोग होते हैं वो उनके झांसे में आ जाते हैं। और पहचान की चोरी यानी कि आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी की निजी जानकारी जैसे कि नाम आधार नंबर चुराकर उनके नाम पर फर्जी अकाउंट खोलना या लोन लेना। रैंसमवेयर यानी कि कंप्यूटर की फाइलों को लॉक यानी कि एनक्रिप्ट कर देना और उन्हें खोलने के बदले पैसे यानी कि फिरौती की मांग करना। इन्वेस्टमेंट स्कैम, ये भी प्रकार का स्कैम है, यानी कि शेयर ट्रेडिंग या पैसे दोगुने करने का लालच देकर लोगों को निवेश के लिए उकसाना। और हाल ही में इस प्रकार की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। तो इस प्रकार की ठगी से आप अपने आप को बचा कर रखें। सिम स्वैप यानी कि धोखे से नया सिम कार्ड निकलवाकर बैंक खातों के ओटीपी प्राप्त करना। तो बहुत सारे टाइप्स मैंने आपको बता दिए, तो आपका फर्ज बनता है कि साइबर ठगी से, साइबर फ्रॉड से अपने आप को बचा कर रखें। और ये काम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के साथ मिलकर ये खास बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं सुरुशादा 90.8 एफएम के जरिए। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरुशादा 90.8 एफएम।

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
1: शारदा। नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हवा में फैलने वाला रोग है जो बिना मुंह ढके खांसने से और इधर उधर बलगम थूकने से फैलता है। आप बलगम को कागज के टुकड़े में थूक कर जला सकते हैं या एक राख भरे मटके में थूक कर जमीन में दबा भी सकते हैं। इससे रोगाणु फैलने का कोई डर नहीं होता। अपनी खिड़कियां खुली रखें जिससे खूब सारी रोशनी और शुद्ध हवा अंदर आए। ऐसे वातावरण में टीबी रोगाणु ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। और हाँ, अपने इलाज का कोर्स समाप्त जरूर कीजिए। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800116666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आज हम बात कर रहे हैं साइबर फ्रॉड के बारे में, साइबर धोखाधड़ी के बारे में। इससे बचने के तमाम उपाय हैं, कौन कौन से वो टाइप्स, उसके बारे में मैं बात कर ही चुका हूँ। सोशल मीडिया पर नकली विज्ञापन और वीडियो घोटालेबाज फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म पर अट्रैक्टिव एड वो लोग चलाते हैं, या यूं कहें कि आकर्षक विज्ञापन वो चलाते हैं। अक्सर मशहूर हस्तियों, सरकारी अधिकारियों, यहां तक कि प्रधानमंत्री के नकली या एडिट किए हुए वीडियो का इस्तेमाल वो लोग करते हैं। और ये वीडियो शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोने में निवेश के लिए पक्के रिटर्न या गुप्त तरीकों का वादा करते हैं। और कोई भी सरकारी संस्था या मशहूर हस्ती व्यक्तिगत निवेश की सलाह नहीं देती है और ना ही मुनाफे की गारंटी देती है।

तो इस बात का ध्यान रखें, अलर्ट रहें और इस प्रकार की साइबर ठगी से, साइबर फ्रॉड से अपने आप को बचा कर रखें। और भी अपडेट मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, बस यही कहूंगा कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ऐसी अपडेट के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
2: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
1: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
3: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। साइबर ठगी से अपने आप को बचा कर रखिए, साइबर फ्रॉडर से अपने आप को बचा कर रखिए, यही उद्देश्य इस प्रोग्राम का। भारत सरकार के साथ मिलकर ये अवेयरनेस प्रोग्राम हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बात निकल कर अब ये सामने आती है कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम यानी कि ट्रेंडिंग ग्रुप्स, लोगों को व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स में लोगों को जोड़ा जाता है और वादे किए जाते हैं कि मुफ्त ट्रेनिंग टिप्स, सेबी से रजिस्टर्ड एक्सपर्ट्स आपको पक्का मुनाफा देने की गारंटी देते हैं। और इन ग्रुप्स के अंदर फर्जी सदस्य बड़े मुनाफे के स्क्रीनशॉट्स वो लोग शेयर करते हैं। पीड़ितों को धीरे धीरे निवेश करने के लिए राजी किया जाता है। भरोसा बनने में कई दिन या हफ्ते वो लोग लगाते हैं, यानी कि आपके ऊपर काम करते हैं, आपके साथ जुड़े रहते हैं। और असलियत ग्रुप के ज्यादातर सदस्य भी इस घोटाले का हिस्सा होते हैं। ये जो जानकारी है भारत सरकार के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप इस प्रकार की ठगी में ना फंसें। साइबर फ्रॉड से अपने आप को बचा कर रखें, साइबर फ्रॉडर से अपने आप को दूर रखिए। ऐसे अपडेट के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सबको हाथ बटाना है, टीबी को मिटाना है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपाली, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हम लोग स्मार्ट के सहयोग से एक अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं, टीबी हारेगा देश जीतेगा। स्मार्ट अपनी मुहिम में सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक टीबी रोगी का उपचार हो। अगर आपको टीबी है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, बस अपने नजदीकी अस्पताल जाएं और छाती का एक्सरे और बलगम की जांच कराएं और स्मार्ट की इस मुहिम में हमारा साथ दें।
1: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।

एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आज हम बात कर रहे हैं साइबर फ्रॉड से अपने आप को बचा कर रखें। ऑनलाइन दोस्ती एक इन्वेस्टमेंट ट्रैप बन जाती है दोस्तों। स्कैमर सोशल मीडिया डेटिंग एप्स पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और वो रेगुलर आपसे चैट करते हैं। ऐसा लगता है कि आपको सामने वाला दोस्त मेरा ही सच्चा दोस्त है, लेकिन इमोशनल भरोसा वो लोग बनाते हैं, भरोसा वो जीतते हैं और कुछ समय के बाद वो इन्वेस्टमेंट के मौके बताते हैं। और एक अलर्ट मैसेज यानी कि चेतावनी का संकेत ये होता है कि कोई भी ऑनलाइन अजनबी जो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए जोर दे, वो एक बड़ा रेड फ्लैग है, एक रेड अलर्ट है, वहीं आप अलर्ट हो जाइए। और बात करें तो फर्जी ऐप या फर्जी वेबसाइट यानी कि पीड़ितों से जो लोग पीड़ित हैं, विक्टिम हैं, उनको हमारी तरफ से अलर्ट मैसेज है कि ऐसे पीड़ित व्यक्ति फर्जी ऐप या फर्जी वेबसाइट प्ले स्टोर के बाहर किसी अनजान लिंक से कोई ऐप इंस्टॉल करने और किसी फर्जी वेबसाइट के जरिए पैसे लगाने के लिए अगर वो कह रहे हैं, आपसे कहा जाता है, तो ये सारे प्लेटफॉर्म फर्जी मुनाफा, फर्जी अकाउंट बैलेंस और पैसे निकालने के फर्जी विकल्प दिखाते हैं। असल में होता क्या है कि पैसा सीधे धोखेबाजों के पास चला जाता है और जब पीड़ित तो पैसे निकालने की कोशिश करता है तो ऐप काम करना बंद कर देती है और वेबसाइट गायब हो जाती है। टैक्स या फीस के नाम पर और पैसे मांगे जाते हैं। इस स्टेज तक आते आते पैसा पहले ही आपका डूब चुका होता है। ऐसी अपडेट के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

हां जी भाई कोट बड़ी पेंदी हुंदी जे फिर ना क्यों दस्या नहीं ते मुड़ के जे किते मेरे वांगू फड़े गए ना ते फिर कहंदे फिरोगे सॉरी अंकल सॉरी मैं ते ट्यूशन बारे पुछण आया सी।

हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी की मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज और पोषण सहायता उपलब्ध है। मन में हो टीबी से जुड़ा सवाल तो करें टोल फ्री नंबर पर कॉल 1800-11-6666। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: द्वारा जनहित में जारी।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.
1: आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो विषय साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉडर से अपने आप को बचा कर रखिए, ऐसे धोखेबाजों से अपने आप को बचा कर रखिए। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो ठगी से कैसे अपने आप को बचा कर रखें। सुरक्षा से जुड़ी हुई जरूरी सलाह मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सोशल मीडिया विज्ञापनों या अनजान लोगों से मिले निवेश की सलाह पर कभी आप लोग भरोसा ना करें, यकीन बिल्कुल भी ना करें। अनजान लिंक या एपेक फाइलों से कभी भी कोई ऐप इंस्टॉल ना करें। आधिकारिक स्रोतों पर सेबी रजिस्ट्रेशन की पुष्टि आप करें। cybercrime.gov.in पर तुरंत रिपोर्ट करें या 1930 पर आप कॉल कर सकते हैं। और फिर डिजिटल अरेस्ट स्कीम की पूरी जानकारी, यानी कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम एक तरह का धोखा है, धोखाधड़ी है। इसके अंतर्गत बात निकल कर ये सामने आती है कि इसमें जो अपराधी है वो फोन कॉल या वीडियो कॉल पर पुलिस या सरकारी अधिकारी होने का दिखावा करके लोगों को डराने का वो काम करते हैं और वो पीड़ित को बताते हैं कि उनके खिलाफ कोई गंभीर अपराध दर्ज किया गया है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, नशीले पदार्थों की तस्करी या अवैध सिम कार्ड का इस्तेमाल। स्कैमर कहता है कि आपसे पूछताछ की जाएगी, जिसका मतलब है कि आप किसी और से बात नहीं कर सकते और ना ही कॉल कट कर सकते हैं, और पीड़ितों को कई घंटों या यूं कहें कि कई दिनों तक कॉल पर ही उलझाए रखते हैं ताकि उनके मन में डर और घबराहट पैदा हो जाए। कभी कभी वो वीडियो कॉल पर पुलिस की वर्दी पहनते हैं या असली दिखने के लिए नकली पहचान पत्र या यूं कहें कि आईडी कार्ड्स वो लोग दिखाते हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि तुरंत पुलिस को सूचित करें और जो नंबर मैंने आपको बताया 1930 पर आप कॉल कर सकते हैं या इसके अलावा cybercrime.gov.in पर आप अपडेट कर सकते हैं। ऐसी अपडेट के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय है साइबर फ्रॉड। धोखाधड़ी से अपने आप को बचा कर रखिए। इस प्रकार के जो फ्रॉडर हैं, जो धोखेबाज हैं, वो एक व्यक्ति को अगर पीड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, या वो पीड़ित व्यक्ति इनके झांसे में आ जाता है, तो उनसे पैसे के लेन देन की जांच करवाने के लिए या मामले को चुप या रफा दफा करने के लिए पैसे की डिमांड करने लगते हैं। और आमतौर पर होता क्या है कि बैंक ट्रांसफर, यूपीआई या क्रिप्टो करेंसी के जरिए वो रुपया मांगते हैं। पैसे मिलते ही जालसाज लोग गायब हो जाते हैं। और भारत में डिजिटल अरेस्ट यानी कि डिजिटल गिरफ्तारी जैसा कोई कानूनी प्रावधान है ही नहीं। बस आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। और पुलिस कभी भी फोन या वीडियो कॉल पर किसी को गिरफ्तार नहीं करती, ध्यान रखिएगा। पुलिस कभी भी किसी मामले को बंद करने के लिए पैसे नहीं मांगती। अगर आपको ऐसा कोई कॉल आता है तो तुरंत फोन काट दें। अपनी कोई भी निजी जानकारी आप साझा ना करें। अगर आप किसी साइबर धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं तो फिर मैं दोहराता हूं, 1930 पर आप कॉल करें या cybercrime.gov.in पर जाकर इसकी शिकायत आप कर सकते हैं। उन लोगों का हथियार ये है, डर उनका हथियार है, जागरूकता ही आपकी सुरक्षा है। तो बहुत सारी अपडेट्स मैंने आप तक पहुंचा दी, बस फर्ज आपका बनता है कि आप अलर्ट रहें, सावधान रहें। और एक लाइन हमेशा याद आती है जो अक्सर हमने सुनी है, देखी है, पढ़ी है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। सुनते रहिए ऐसी अपडेट के लिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि आप जानते हैं, सुनो शारदा सामुदायिक रेडियो स्टेशन और स्मार्ट मिलकर के स्वास्थ्य जन जागरूकता का कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आए हैं ग्रेटर नोएडा के नवादा गांव में। यहां पर हमारे साथ में हैं डॉक्टर बेबी शर्मा। आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं नवादा में और अपना क्लिनिक चलाती हैं, और बहुत सारी जानकारी आज हम डॉक्टर साहिबा से लेंगे। और खास करके हम जो गर्भवती महिला हैं, बच्चे हैं, उनके बारे में बात करेंगे और पोषण के बारे में बात करेंगे। और ये देखा भी जाता है कि जो महिलाएं होती हैं परिवार में, परिवार की धुरी होती हैं, और वो सबका ख्याल तो रखती हैं लेकिन कहीं ना कहीं अपना ख्याल वो नहीं रख पाती हैं, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें, ये सभी बातें आज हम डॉक्टर बेबी शर्मा जी से करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर बेबी शर्मा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत।
1: थैंक यू।
0: खून की कमी की बीमारी अक्सर हम सुनते हैं, देखते हैं कि महिलाओं में ये ज्यादा, खासकर गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें तो ये ज्यादा ही होती है, और बच्चों में भी बीमारी देखने को मिलती है। तो इसकी क्या वजह है बीमारी की, और किस तरह से जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं?
1: सबसे पहले तो सर, जो आपने ये जागरूकता अभियान चला रखा है इसके लिए मैं आपकी बहुत ही प्रशंसा करना चाहूंगी, क्योंकि आप बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हमारे आसपास के लोगों के स्वास्थ्य को जागरूक करने के लिए, उनको अपने हेल्थ के बारे में जागरूक करने के लिए आप ये अभियान चला रहे हो। तो ये मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, और इसके लिए मेरी तरफ से जितनी भी अच्छी जानकारी हो पाएगी मैं वो आपको जरूर देने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले तो यही है कि खून की कमी, ये यहाँ के एरिया में तो सर बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ही कॉमन, खासकर बच्चों में और गर्भवती महिलाओं में। सबसे मेन जो बेसिक रीज़न है वो तो यही है सर कि पोषण की कमी है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, डाइट का और लाइफस्टाइल का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से डे बाय डे आपका HB जो है कम होता जाता है, RBCs हैं उनकी क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी कम होती जाती है। किसी भी तरह का एनीमिया हो, या तो HB कम होता है, या जो आपकी RBC है वो अच्छी तरह से मैच्योर नहीं होती, वो फंक्शन नहीं करती है ढंग से, वो भी एक एनीमिया का ही रूप होता है। तो सबसे जो मेन कारण होता है वो तो आपका यही है कि आपकी जो खान पान है उसमें पूरी तरह से लापरवाही होती है। अच्छा, दूसरा रीज़न क्या होता है, कई लोग कहते हैं कि हम डाइट तो अच्छी लेते हैं लेकिन फिर भी क्यों थकावट रहती है, क्यों एनीमिया रहता है। उसमें फिर हमारा दूसरा जो कंसर्न आ जाता है वो आता है सर मानसिक स्वास्थ्य के। अगर आप अच्छी डाइट लेते हो, देखिए मैं आयुर्वेद की डॉक्टर हूँ, हमारे आयुर्वेद में खाने के टाइम के भी 10-15 रूल्स हैं कि आपको इस तरह से खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और किस मनस्थिति में खाना चाहिए। अगर आप क्रोध में खाओगे, अगर आप अवसाद में खाओगे, दुख में खाओगे, तो आप कितनी भी अच्छी डाइट ले रहे हो वो आपको कोई भी फायदा नहीं करेगी, और डे बाय डे फिर वही किसी ना किसी रूप कमजोरी के रूप में आपका शरीर उसको दिखाएगा, चाहे वो कैल्शियम की कमी हो जाए, हड्डियों में से पोषण चला जाए, या फिर वो एनीमिया के रूप में आपका आएगा। तो सबसे पहला तो आपका रीज़न हो गया कि पोषण की कमी तो है ही है, आपकी डाइट सही नहीं है, आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है। दूसरा है कि आपकी जो मनस्थिति है वो आपकी उसके एक्यूरेट नहीं है, जो आपकी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शन होने चाहिए कि कैसे सेल्स बनती है, कैसे RBC WBC प्लेटलेट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो इस चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो काफ़ी हद तक हम एनीमिया से को कंट्रोल कर सकते हैं।
0: तो बहुत सारी बातें आपने बताई हैं डॉक्टर बेबी शर्मा जी। तो अब बात करते हैं कि जो हम एनीमिया की बात कर रहे हैं तो इसकी कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। मान लीजिए कोई एनीमिया का शिकार हो चुका है, महिलाएं हैं या बच्चे हैं, तो एक तो ये कंडीशन आ गई, दूसरे के निकट भविष्य में ये हमको ना हो, तो दोनों कंडीशनों के बारे में आपसे जानना चाहें, क्या खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं।
1: देखिए सबसे पहले तो अगर आपके आसपास कोई सुविधा है तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले एक बार अपना ब्लड टेस्ट करवा लें। सबसे कॉमन जो बेसिक टेस्ट होता है वो होता है CBC, उससे एक्यूरेट ये पता चल जाता है कि आपका एनीमिया का लेवल किस लेवल तक का है। आपका जो नॉर्मल BP है फीमेल्स में अगर हम बात करें तो 12 से 16 ग्राम होना चाहिए, जो छोटे बच्चे हैं 10 साल तक के उनमें 13 से 17 18 ग्राम तक भी हम नॉर्मल मान के चलते हैं। तो अगर आप आसपास ऐसी कोई सुविधा है तो जरूर से एक बार अपना CBC टेस्ट करा लें, ताकि एक रीज़न का पता चल जाए, जब हमें रूट कॉज पता चल जाएगा तो हम उसको आसानी से दूर कर सकते हैं। दूसरी बात, चलो आपके आसपास कोई ऐसी सुविधा नहीं है, ऐसे तो फिर डॉक्टर के पास जाओगे तो वो जो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, आपको जैसा आहार विहार बताएंगे आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। दूसरी बात, जो आपको घर पे खुद ध्यान रखनी है, अगर आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो या उनकी भी सारी गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो आपको खुद क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अपने एक दिनचर्या बनाइए, जब तक आप एक अच्छी दिनचर्या नहीं बनाएंगे तब तक आपकी सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। जैसा हम कई बार सुनते भी हैं कि अगर आप एक मटके को भरना चाहते हो तो उसमें जितने छेद है पहले उन छेद को बंद कर दीजिए, फिर डे बाई डे आपका मटका भर जाएगा। तो आपकी लाइफ में जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो एनीमिया कोच कर रही हैं, पहले तो उनको दूर कर दीजिए। इसके लिए एक संतुलित आहार, संतुलित विहार, दोनों चीज़ें हम मेंशन करते हैं। हमारे आयुर्वेद में देखिए एक स्वस्थ की परिभाषा होती है, सम दोषः सम अग्निश्चय सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इति अभिधीयते। मतलब जिसके दोष सम है, जिसकी धातु सम है, जिसकी मल क्रिया यानी जो आपके मल है, यूरिन पास आउट है, स्टूल पास आउट है, वो समय पर हो रही है, जिसकी आत्मा और इंद्रिय प्रसन्न है, सिर्फ उसी को हम स्वस्थ कह सकते हैं। इसमें आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी आ गया, आपका मानसिक स्वास्थ्य भी आ गया। तो अभी हम बात करें सिर्फ एनीमिया के बारे में, तो इसके लिए क्या करना है, एक संतुलित दिनचर्या बनानी है। आपका उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए। उठने के बाद 5-10 मिनट आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस को दीजिए, शांति से बैठिए, अपना शेड्यूल बनाइए कि आज हमें डाइट में ये लेना है। अब घर में अगर आपके बहुत अच्छी डाइट नहीं है, देखो सब तरह की फैमिलीज होती है, बहुत अच्छा अगर आपको पोषण नहीं मिल रहा है तो घर में जो चीज़ अवेलेबल है उनको भी अगर संतुलित तरीके से खाते हैं, अगर आपके घर में दाल है, स्प्राउट्स बना सकते हो आप उनके, मल्टीग्रेन आटा यूज कर सकते हो, अगर आपके घर में बादाम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मूंगफली का भी यूज कर सकते हो। तो घर में जो चीज़ होती है उसी को संतुलित तरीके से खाकर एक समय पर, ऐसा नहीं है कि लेडीज क्या करती है 12-1 बजे सारा काम हो गया फिर अपना खाना खाएंगी, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। सुबह 7-8 के बीच में कुछ हल्का फुल्का आपने ले लेना है। आप पैकेट फूड लाते हो उस पर इतना खर्चा करते हो, तो उन पैसों से आप कुछ हेल्दी चीज़ें भी खा सकते हो, एक सेब ला के खा लिया, एक केला ला के खा लिया। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है, आप घर पे जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको आप संतुलित करके अपने डाइट का ध्यान रखिएगा। दूसरा एक चीज़ जो हम हर कोई बंदा यूज कर सकता है, एक आंवला की रसायन यूज करते हैं हम। अगर आंवला की रसायन नहीं मिल रहा है तो आंवला भी हम डेली बेस पे यूज कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, हर जगह मिल जाती है। तो एक आंवले का यूज अपनी डाइट में जरूर से जरूर कीजिएगा। अगर आपके आसपास कोई और है ऐसी शॉप तो एक पुनर्नवा मंडूर आता है, ये दो चीज़ आप विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के भी अपने आप भी ले सकते हैं। तो आंवले का यूज, पुनर्नवा मंडूर का यूज, और घर पे जितने भी आपके खाने पीने की सुविधा है, देखो फ्रूट्स में तो हम बात करते हैं अनार, गाजर, सेब, चुकंदर, मौसम के अकॉर्डिंग जो भी मौसमी फ्रूट होता है हमें उस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। डाइट में जो भी आपके घर में सब्जी बनती है, रोटी बनती है, हरी सब्जियों पे ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिएगा। तो ये हर एक घर के शेड्यूल अलग अलग होता है खान पान का, तो आप उन्हीं संसाधनों में से अपने एनीमिया की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी बात, जब आप उनका बाहर का पैकेज्ड फूड बंद कर दोगे वो ऑटोमेटिकली अपने आप घर का खाना शुरू कर देते हैं। कोई एक दो डेयरी प्रोडक्ट्स और घर में जो भी आपकी सब्जी रोटी बनती है, कोई हम स्पेशल मेंशन नहीं करेंगे कि आप मल्टीग्रेन खिलाओ, ज्वार खिलाओ, बाजरा खिलाओ, जो भी आपके घर की डाइट है, जो भी आपके पुराने टाइम से चलती आ रही है, वो भी अगर आप बच्चों को सही टाइम से सही भूख में दोगे तो उनसे भी एनीमिया की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी।
0: बिल्कुल, तो बहुत सारी बातें आपने बताई हैं किस तरह से एनीमिया की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। अब बात कर लेते हैं जो खासकर गर्भवती महिलाएं हैं तो वो अपने पोषण का ध्यान कैसे रखें ताकि वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके।
1: गर्भवती महिलाओं को तो सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है सर, क्योंकि वो एक अगर हेल्दी बच्चे को पैदा करेंगी तो हमारा समाज, ऑब्वियस सी बात है कि जो फ्यूचर बनेगा देश का वो बिल्कुल हेल्दी बनेगा। और अगर उन्होंने अपने खान पान का ध्यान नहीं रखा तो खुद तो बीमारी से ग्रसित होंगी ही होंगी, परिवार वाले भी दुखी होंगे, साथ ही साथ बच्चा भी कुछ ना कुछ बीमारी लेके आएगा जो कि फिर माँ बाप के लिए भी बहुत ही मतलब टेंशन वाली बात हो जाती है। सबसे पहले तो गर्भ का पता चलते ही आपको पहली विजिट तो डॉक्टर के पास जरूर करनी है। जैसे आप सामुदायिक केंद्र चला रहे हैं तो वहाँ पे जाके, जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट जहाँ पे चेकअप होता है वहाँ भी करवा सकते हैं। सबसे पहली विजिट तो पहले 3 महीने में हो जानी चाहिए डॉक्टर के पास। अगर बाई चांस फिर आप नहीं भी जा पा रहे हो तो कम से कम जो सरकारी जो सुविधा देती हैं, जो टैबलेट देते हैं आयरन की, कैल्शियम की, वो तो आपको टाइम टू टाइम ले ही लेनी चाहिए, लेकिन एक रूटीन चेकअप होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो गर्भवती महिला

0: घंटे से ज़्यादा खाली पेट नहीं रहना है। कभी या तो मन किया कोई फ्रूट खा लिया, कभी मन किया कभी सब्जी रोटी खा ली, जो भी उसका मन करे। और डॉक्टर ने जो मेडिसिन बता रखी है वो तो लेनी ही लेनी है टाइम पे। तीसरी बात, डिहाइड्रेशन से बचना है, क्योंकि जब गर्भ पेट में होता है तो सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन की जरूरत होती है, क्योंकि बच्चे को भी पानी की ज़्यादा जरूरत होती है। हमारे पास जो ज़्यादा केसेज आते हैं सर, वो कुपोषण के इसीलिए आते हैं क्योंकि गर्भ में पानी खत्म हो जाता है और बच्चे की ग्रोथ डे बाय डे कम होती जाती है, फिर वो ग्रोथ रिटार्डेशन होगा, प्रीमैच्योर बेबी होगा। तो उससे बचने के लिए डॉक्टर से दी हुई मेडिसिन टाइम पे लीजिएगा, और घर पे भी अपने स्वास्थ्य का, अपने हार विहार का अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। और फिर वही मैं मेन बात फोकस करना चाहूँगी, मानसिक स्वास्थ्य पे। अगर आपका मन खुश है तो आप कम आहार में भी आप हेल्दी बच्चा कर सकते हो, लेकिन अगर मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो सर आप कितना भी अच्छा खा पी लीजिएगा वो भी आपको कोई फ़ायदा नहीं करेगा। तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का उससे भी ज़्यादा ध्यान रखना है आपको।
1: जो न्यू बॉर्न बेबी हैं तो उनका कैसे ध्यान रखें, जो माता हैं या उनके जो घर वाले हैं, परिवार वाले हैं?
0: देखिए, न्यू बॉर्न बेबी को सबसे पहले तो हमें उसका एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी में सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम है वो होती है जॉन्डिस की। क्योंकि एकदम से बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो बाहर के एनवायरमेंट में उसको सेटल करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए उसके जो RBCs हैं, जो ब्लड है, वो थोड़ा सा हफ्ते या 10 दिन पहले कम होता है। तो सबसे पहले तो न्यू बॉर्न बेबी को जो सुबह की अर्ली मॉर्निंग की जो धूप होती है, जैसे सनराइज होता है, सूरज उगता है, तो मौसम के अकॉर्डिंग करना है। अब सर्दियों में आप सुबह लेके मत बैठ जाइएगा, नहीं तो वो फिर सर्दी से भी ग्रसित हो सकता है। तो जब अर्ली मॉर्निंग की धूप होती है, थोड़ी सी गर्माहट वाली, 20 से 25 मिनट आपको बच्चे को वो दिखानी है जरूर से जरूर। अब ये डिपेंड कीजिएगा, आप अगर बहुत सर्दी है तो थोड़े से कपड़े भी पहना सकते हैं, और मौसम अगर अनुकूल है तो फिर उसको बिल्कुल अनकवर करके उसकी सिर्फ जो टेस्टिस और जो पेनिस होता है वो एरिया आपको कवर करके रखना है, उसकी आंखों को आपके कवर करके रखना है, और सुबह की 15-20 मिनट की आपको धूप जरूर लगवानी है। दूसरा है माँ का दूध। कई बार ये हो सकता है माँ की लापरवाही, या कई बार डॉक्टर्स की भी कुछ लापरवाही होती है कि वो बच्चे को जो फर्स्ट 24 घंटे का दूध है वो थोड़ा अवॉइड कर देते हैं, या उनको ध्यान नहीं रहता, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो पहले 24 घंटे का दूध और उसके बाद भी हर 2 घंटे में, हर 3 घंटे में बच्चे को माँ का दूध जरूर से जरूर पिलाना है। 6 महीने तक हमें उसको ऊपर का कोई भी आहार नहीं देना है, और जैसे ही माँ डाइट खाएगी वैसे ही उसका दूध बनेगा और वैसे ही बच्चे का पोषण होगा। तो पहले 6 महीने में हमें ये नहीं सोचना कि डिलीवरी हो गई है, अब माँ को ज़्यादा न्यूट्रिशन की, ज़्यादा पोषण की जरूरत नहीं है। आयरन, कैल्शियम पहले 6 महीने में डिलीवरी के बाद भी माँ को लेने जरूरी होते हैं, ताकि दूध की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पे कोई भी फर्क ना आए।
1: बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है, किस तरह से जो न्यू बॉर्न बेबी है उनका ध्यान परिवार वाले माता हैं वो कैसे रखेंगी। जैसे भी बात आप बता रही थी, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का अच्छा होना बहुत जरूरी है।
0: मानसिक स्वास्थ्य की सर महिलाओं को ही थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है, मेल्स को भी होती है, पर वो एक हद तक अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वो बाहर भी जाते हैं, उनका सर्कल भी अलग होता है, उनका जॉब एरिया होता है। लेकिन फीमेल्स के साथ, जबकि आजकल हमारे यहाँ पे मोस्टली फीमेल्स वर्किंग नहीं होती हैं, घर पे उनका ज़्यादा टाइम बीतता है, तो उनका मानसिक स्वास्थ्य एज कम्पेयर टू मेल्स थोड़ा सा डाउन ही रहता है। और सर मानसिक स्वास्थ्य की तो हम क्या परिभाषा बताएं, हमारे तो यहाँ पे मानसिक बीमारी को बीमारी माना ही नहीं जाता है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, जैसे कोई सास या बहू आई, तो सास कहती है कि हमारे घर में कोई कमी नहीं है, खाने पीने को अच्छा है, पहनने ओढ़ने को अच्छा है, पता नहीं किस बात से दुखी रहती है। लेकिन जब हम फीमेल से अकेले में बात करते हैं सर, तब हमें पता होता है कि वो कितनी सारी दुविधा से जूझ रही होती है। और जैसे आपने बताया कि गर्भवती महिलाएं हैं या न्यू बॉर्न बेबी जिनके होता है, उनका तो मानसिक स्वास्थ्य और भी बुरी हालत में है, क्योंकि ना तो वो अपने लिए कुछ कर पा रही है, ना वो बच्चे का ढंग से ध्यान रख पा रही है। और मानसिक स्वास्थ्य तो एक ऐसी प्रॉब्लम है सर, अगर आपका मन बीमार है और आपका शरीर तंदुरुस्त है तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका शरीर में कोई प्रॉब्लम है, आप सपोज करो हैंडीकैप, आपके एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, लेकिन अगर आपका मन स्ट्रोंग है तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो सर, और ये हम लाइव एग्जांपल अपने आसपास देखते भी हैं। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन है सर कि मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हमारे समाज में इसको कोई वैल्यू भी नहीं दी जाती है। मानसिक बीमारी को हम बीमारी समझते ही नहीं है जब तक इंसान पागल के लेवल पर ना आ जाए, जब तक वो बिल्कुल ही अपना संतुलन ना खो दे। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं सर, और मानसिक स्वास्थ्य में हम किसी दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते, ना कोई दूसरा इसको ठीक कर सकता है, ये हम खुद ही ठीक कर सकते हैं। और इसको ठीक करने के लाखों तरीके हैं सर, आपका जिस साइड इंटरेस्ट है आप उस साइड जाइएगा। मानसिक तनाव होने के भी लाखों

0: रीज़न है, अगर हम काउंट करने बैठेंगे तो घर परिवार ऑफिस बच्चे बहुत सारे रीज़न होते हैं सर। लेकिन अगर हम इसको ठीक भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास लाखों रीज़न है। डिपेंड करता है कि आपका माइंड किस तरफ जाता है। अगर आप बुक पढ़ने में शांति का अनुभव करते हैं तो आप दिन में 15-20 मिनट अपने लिए कोई अच्छी सी बुक पढ़ने के लिए निकालिए। अगर आप घूमने फिरने में अच्छा अनुभव करते हैं तो कोई डेली का आधा घंटा अपने घूमने फिरने के लिए निकालिए। पार्क में जाइए, अकेले बैठिए, कुछ भी करिए। अगर आपको पूजा पाठ या भक्ति करने से अच्छा महसूस होता है तो वही दिन के 40-45 मिनट आप मेडिटेशन कीजिए, जिसमें आप जिस भी भगवान को जिस किसी को भी मानते हो तो आप उसके साथ अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए। क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य अगर आपका सही है तो आप फिर शारीरिक स्वास्थ्य से नहीं घबराएंगे सर। अगर आपको एनीमिया भी हो गया या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप आसानी से उसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि उसको पता है मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे ये दवाई लेनी है, अगर आपका मन स्ट्रोंग है तो। लेकिन अगर मन कमजोर है तो आप ना अपने लिए कुछ कर पाएंगे सर और ना किसी दूसरे के लिए।
1: बिल्कुल, तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है, मन का स्वास्थ्य है, उसका प्रसन्न होना बहुत जरूरी है। आखिर में डॉक्टर बेबी शर्मा जी आपसे बात कर लेते हैं, जैसा कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और हीट वेव के बारे में भी सुनते हैं, लू के बारे में भी सुनते हैं, तो किस तरह से लोग महिलाएं बच्चे अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करें, क्या खाएं क्या पिएं, उसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे।
0: सबसे पहला तो बचाव यही है सर, अगर हमें किसी भी चीज़ से बचना है तो उस चीज़ से दूर रहो। तो अगर आपको पॉसिबल है जितना आप घर पर रह सकते हैं तो उतना आप घर पर रहिएगा। लेकिन ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबको काम करने के लिए भी निकलना पड़ता है। तो उसके लिए फिर आप अपना बचाव कीजिएगा, अपनी बॉडी को कवर करके निकलिएगा। खासकर आपका जो सिर वाला रीजन है, जहाँ पे हीट डायरेक्ट एब्जॉर्ब होती है, ज़्यादा गर्मी होती है, उसको आप कवर करके निकलिएगा। और अपने साथ हाइड्रेशन के लिए कुछ ना कुछ जरूर रखिएगा। अगर आपका बीपी ज़्यादा फ्लैक्चुएट करता है तो आप इलेक्ट्रोलाइट्स का घोल है वो एक बोतल पानी में घोल के आप अपने साथ लेके चल सकते हैं, सिंपल पानी ले सकते हैं। और बजाय कि आप चाय कॉफ़ी पे ज़्यादा कंसंट्रेट करने के, आप रास्ते में भी कभी नींबू पानी पी लिया, कभी आपने या कुछ जो ये जलजीरा टाइप के आते हैं ये पी लिया, मतलब अपने बॉडी को आपने हाइड्रेट रखना है, किसी भी तरीके से आप उसको रख सकते हैं। दूसरा, अपने आप को कवर करके निकलना है। तीसरा, अपने खान पीन पे ध्यान रखना है। घर से खाली पेट तो बिल्कुल भी नहीं निकलना है, कुछ भी हल्का फुल्का अपना नाश्ता करके निकलना है। और अगर पॉसिबल हो, आपके पास ऐसा कोई साधन है, तो अपने बैग में एक दो फ्रूट जरूर रखिएगा।
1: बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छी जानकारी डॉक्टर बेबी शर्मा जी आपने आज सुनो शारदा 90.8 FM सामुदायिक रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई है। और ज़रूर वो आपकी बातों का अनुकरण करेंगे, जीवन में आपकी बातों को धारण करेंगे, अपनाएंगे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।
2: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी का पूरा और पक्का इलाज है, लेकिन इलाज में रुकावट करने से टीबी की दवा मरीज पर असर करना बंद कर देती है। इसलिए ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की जांच करना आवश्यक है। DRTB की जांच आधुनिक मशीन CBNAT के द्वारा सरकारी और नोटिफाइड प्राइवेट टीबी मरीजों के लिए मुफ्त उपलब्ध है। इस जाँच की रिपोर्ट केवल 2 घंटे में दी जाती है, जिससे DRTB और उसके सही उपचार का जल्द पता चल जाता है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
3: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
4: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकलकर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन B की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉन वेज नहीं खाते।

0: दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो साधन 90.8 FM।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं अरुण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 एफएम।
1: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज कैरी ऑन।
2: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स में जीरो लापरवाही। टीबी की जांच में देरी ना करें, बलगम की सही जांच कराएं। टीबी की दवाइयों के कोर्स को नियमित रूप से लें, नहीं तो इलाज मुश्किल हो जाएगा।
1: तो मतलब इस क्लास का सार है लापरवाही करना टीबी से सिर्फ आधी लड़ाई जीतना।
2: यस सर, बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा

0: क्या आपको पता है प्रसव के तुरंत बाद नवजात शिशु को माँ के सीने से लगाकर रखना चाहिए। ऐसा करने से नवजात शिशु का तापमान नियंत्रित रहता है, जो नवजात शिशु के लिए अच्छा होता है।
1: इस प्रक्रिया को कंगारू मदर केयर कहते हैं। प्रसव के बाद अस्पताल से घर वापस आने के बाद घर पर भी नवजात शिशु का तापमान नियंत्रित रखने के लिए उसे सीने से लगाकर रखना चाहिए।
0: कंगारू मदर केयर सीखने और इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप नजदीकी आशा या नर्स दीदी से संपर्क कर सकते हैं।
1: जब होगी सही देखभाल तभी तो आएंगी खुशियाँ बेमिसाल।
0: शिशु की सही देखभाल से फर्क पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: मैं तुमसे प्यार नहीं करती, कृपया आप रास्ता देंगे?
3: प्लीज।
2: थैंक यू।
4: वर्षा जी, कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो।
2: तुम्हें कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अब पता चलेगा बच्चों कौन हूँ मैं।
4: अली का शरारती है। वो तो ऐसे मजाक करती है, बहुत प्यार करती है मुझसे।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बम चिक चिक बम चिक बम बम बम चिक चिक

हे गाइस व्हाट्स अप, क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878 9377 0। Seats are limited.

फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें

0: www.sharda.ac.in.
1: The world is here.

0: कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: For more information, please call Dr. Ramneet 9878937700. Seats are limited. Hurry up, kahin der na ho jaye.

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेने पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है। गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं, तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली है। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए, तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखे, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखे कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है। सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी

0: गोल्डन चांस देता है, तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
1: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। लेकर हाजिर हूं आपका वही मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, आज के कार्यक्रम खेत खलियान में सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की, जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक व्यापक कल्याणकारी पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के गरीब और कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करना है। ये योजना COVID-19 महामारी के दौरान 2020 में शुरू की गई थी, लेकिन अब इसका मुख्य घटक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के रूप में चल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले लगभग 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। प्रत्येक लाभार्थी को उसकी नियमित मासिक पात्रता के अतिरिक्त प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम गेहूं या चावल मुफ्त खाद्यान्न दिया जाता है। अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त मिलता है और इसी योजना का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, विशेषकर आर्थिक व्यवधानों के समय में। तो किसान मित्रों, ये तो जानकारी रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं कोशिंदर खदाना और किस्सा रहेगा हीर रांझे का।

किसान मित्र, अभी आप कोशिंदर खदाना से ये रागनी सुन रहे थे और किस्सा था हीर रांचे का। किसान मित्रों, खेती किसानी में आजकल नई नई तकनीकें आ गई हैं और इन तकनीकों का सीधा फायदा हमारे किसान भाइयों को मिल रहा है। ग्रीन हाउस खेती भी ऐसी ही एक तकनीक है। इस तकनीक के माध्यम से हमारे किसान भाई मौसमी और गैर मौसमी फसलों की खेती 12 महीने लगातार कर सकते हैं। ये तकनीक फसलों की रक्षा करने और उन्हें कीटों के साथ साथ बीमारियों से मुक्त रखने में सहायक है। ग्रीन हाउस और पॉली हाउस में सब्जियों की खेती करने के कई फायदे होते हैं। इनमें सब्जियां सर्दियों में पाले और गर्मियों में तेज धूप से सुरक्षित रहती हैं। इससे मौसम और कीट रोग जनित नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसमें खेती करके फसलों को आवारा पशुओं से भी बचाया जा सकता है। वहीं ग्रीन हाउस में सब्जियों के लिए अनुकूल मौसम रहने से इनके खराब होने का खतरा भी नहीं के बराबर रहता है। इससे हमारे किसान भाइयों को फसल खराब हो जाने की वजह से होने वाला आर्थिक संकट नहीं झेलना पड़ता। तो किसान मित्रों, आप भी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके बेमौसम की फसलों को उगा करके अच्छा खासा धन अर्जित कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये तो बात रही कृषि में उपयोग होने वाली आधुनिक तकनीकों के बारे में, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं प्रियंका चौधरी।

0: कली के द्वारा दादा लक्ष्मीचंद जी ने बता दिया कि आत्मा का बंदे ये जतन कर ले और रोज थोड़ा थोड़ा हरि का
1: भजन कर ले,
0: अगर जीवन में अच्छा कार्य किया होगा तो भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। लेकिन जानते सब हैं, बट उन चीजों को मानता कोई नहीं है।

0: किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे प्रियंका चौधरी से ये उपदेश। किसान मित्रों, कई बार अचानक होने वाली भारी बारिश, सूखा, तूफान या किसी अन्य तरह की प्राकृतिक आपदा से फसलों के खराब होने का खतरा बना ही रहता है और इसका पूरा नुकसान आप किसान भाइयों को उठाना पड़ता है। इन्हीं अनिश्चितताओं के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान से आपको बचाने के लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चला रही है, जो किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आपको वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बहुत कम पैसे देकर आप अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। बीमा कवरेज के तहत अगर बीमित फसल नष्ट हो जाती है तो इसकी पूरी भरपाई का जिम्मा बीमा कंपनी का होता है। इस बीमा के तहत खाद्यान्न फसलें जैसे अनाज, बाजरा और दालें, तिलहन और वार्षिक, वाणिज्यिक या वार्षिक बागवानी फसलों को कवर किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन करने के लिए आप किसी भी बैंक का बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने पास के बैंक में जाकर के एक फॉर्म भरना पड़ता है और फिर आपकी फसल का बीमा हो जाता है। अगर किसी किसान भाई के पास पहले से किसी तरह का लोन या क्रेडिट कार्ड है तो वे उस बैंक से ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवा सकते हैं। तो किसान मित्रों, आप भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपनी फसल का बीमा करवाएं ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आपकी फसल में जो नुकसान होता है उसकी भरपाई यानी कि आपको वित्तीय सहायता दी जा सके। तो किसान भाइयों, ये तो आपने जाना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं ऋषिपाल खदाना और पप्पू भारती से एक रागनी, किस्सा रहेगा महाभारत का।
1: सती

0: हस्तिनापुर में दुर्योधन यदि ऐसे हो गया तो यह हस्तिनापुर हस्तिनापुर नहीं रहेगा।
1: ए दासी की औलाद, यह हस्तिनापुर तो हस्तिनापुर रहेगा, लेकिन याद रहे

0: बात असरी। ये मक्का या बाजरा रखाने वाला आदमी है, ये शोर मचाएगा। मैं खूंटा ठोकने वाला आदमी हूँ, तुम अपना काम करो जो हमने आदेश दिया है।
1: पीछे हट जा तो साधन, रोटी से पीछे हट जा।

0: आत्मा विदुर के गले पर छुरा क्यों नहीं चलाते?
1: नहीं दूसरा सन ये सती वीर पतिव्रता
0: जिभ्या करो जिभ्या

0: क्या हुआ?
1: अरे यो ऋषि पाल का वैगा बिल्कुल, अरे नीति का तन ज्ञान नहीं।
2: ऋषिपाल खदाना और पप्पू भारती द्वारा गाई गई इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी।
1: जी
0: प्लीज कैरी ऑन।
1: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के सिम्टम्स यानी टीबी के आसार, जैसे कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, खांसी में खून का आना, कमजोरी और थकान लगना, वजन घटना, भूख कम लगना और अधिक पसीना छूटना।
0: और इन सब का मैं बताता हूं सार, मिलिए डॉक्टर से न करें विचार अगर दिखें टीबी के आसार।
1: जी सर, बिल्कुल करेक्ट।
0: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
3: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
4: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
5: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
3: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुट जाते हैं, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातें आप तक पहुंचा रहे होते हैं। कोरोना का समय हम सबने देखा और जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारा मारी थी, अगर ये ऑक्सीजन हमें क्षण भर न मिले तो सच बात तो ये है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से नेचर का ख्याल रख सकते हैं, कुछ ऐसी ही बातें, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर अगर आप 5 फल और सब्जियां खाएंगे तो शरीर को भरपूर रूप से मिलेगी आपको एनर्जी। जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कैसे कंट्रोल रखें। लेकिन इससे हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पौधे लगाएंगे, किसी पौधे को सींचेंगे, तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा वटवृक्ष का रूप धारण कर लेगा जो कि आगे चलकर आपको ऑक्सीजन देगा ही देगा। इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाले कुछ फूड्स के बारे में जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह पानी की जरूरत होती है, उसी तरह ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। ये कोशिकाओं को बनाने के साथ साथ उनके बेहतर कार्यों में मददगार होती है। ऑक्सीजन हवा के जरिए शरीर को प्राप्त होता है। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है। ऐसे में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ प्रयास की जरूरत है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ खाद्य पदार्थों की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में। पालक से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे जानते हैं। पालक स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी होता है। ये न सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है, बल्कि इससे आप शरीर में आयरन की कमी को भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आयरन की मदद से शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बेहतर होता है, जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। इसके साथ ही ये आपके शरीर की मांसपेशियों की मजबूती को भी बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं शकरगंद से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर आप शकरगंद का सेवन कर सकते हैं। शकरगंद एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा स्रोत है। इसकी मदद से आप शरीर के अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत होता है, जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बात ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाए एवोकाडो, यानी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में एवोकाडो भी काफी हेल्दी माना जाता है। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से होता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में सुधार ला सकते हैं। बात नींबू की, नींबू है असरदार। नींबू अगर आप शिकंजी में मिलाकर पीते हैं तो जाहिर सी बात है नींबू यूं कहें कि शिकंजी के बगैर अधूरी है। नींबू अगर आप सलाद में डालते हैं तो सलाद स्वादिष्ट हो जाता है। नींबू पानी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर नींबू के रस का सेवन करें। नींबू के रस में मौजूद गुड़ शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने में असरदार होता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम आपके माइंड को अलर्ट रखने में असरदार होता है। बात तरबूज की, जी हाँ, तरबूज गर्मी के सीजन में हर रोज अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा, और गर्मी के मौसम में बहुत तादाद में देखा जाता है तरबूज। जी हाँ, तरबूज से ऑक्सीजन की कमी से राहत मिलती है, कैसे जानते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। दरअसल तरबूज में अल्कालाइन की अधिकता होती है, जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन मौजूद होता है, जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में असरदार है। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और हाँ, नेचर का ख्याल रखें। नेचर का ख्याल रखेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हमारा भविष्य हाथों में है,
1: हम साथ मिलकर आगे बढ़ें।
0: हाथ होंगे साफ सुमन के पालन के साथ। एस मतलब सीधा, बहते हुए साफ पानी से हाथों को गीला करें और साबुन लगाएं। पानी से दूर अपनी हथेलियों को रखें।
1: यू मतलब उल्टा, हाथ के बाहर वाले हिस्से पर अच्छे से साबुन लगाएं।
0: एम मतलब मुट्ठी, अपनी उंगलियों और उनके बीच की त्वचा को रगड़ें।
1: ए मतलब अंगूठा, अंगूठों और उनके बीच की त्वचा को रगड़ें।
0: एन मतलब नाखून, अपनी हथेली और नाखूनों को रगड़ें।
1: के मतलब कलाई, हाथ के पीछे के हिस्से को रगड़ें।
0: और अंत में बहते हुए साफ पानी से हाथों को धोएं और हवा में हाथों को सुखाएं।
1: तू सुमन के पालन के साथ हाथ हो गए पूरे साफ।
0: एस मतलब सीधा,
1: यू मतलब उल्टा,
0: एम मतलब मुट्ठी,
1: ए मतलब अंगूठा,
0: एन मतलब नाखून,
1: के मतलब
0: कलाई।
1: हमारा भविष्य हाथों में है,
0: हम साथ मिलकर आगे बढ़ें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से
0: सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा
1: जनहित में।

हे गाइस व्हाट्सअप, क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, एआई, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हिंसा को नो। इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं, उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम, जिसका नाम है हिंसा को नो, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और ऐसे विशेष कार्यक्रम हमारे स्टेशन पर जो बनाए गए हैं, दूसरे स्टेशन समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
5: जी हाँ, मैं यानी मीनाक्षी आपके लिए लेकर आई हूँ विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो। ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण पर आधारित है और इस कार्यक्रम को स्मार्ट संस्था, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, उनके सहयोग से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला हिंसा के विभिन्न पहलुओं को उजागर करना व उन्हें सशक्त करना, ताकि वो इससे मुक्ति की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा सके। महिलाओं में गैर बराबरी की स्थिति का वर्णन करती आज की कहानी हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं, तो आइए सुनते हैं ये कहानी।
6: स्त्री हूँ मैं, मुझे देवी मत बनाओ, झूठी शान की बलि वेदी पर मुझे मत चढ़ाओ। सशक्त हूँ मैं, मुझे अबला मत बनाओ, हर महीने रक्तिम होना नियति है मेरी। अंधविश्वासों की जंजीरों में ना मुझे उलझाओ, उड़ना है मुझे भी उन्मुक्त गगन में। भ्रूण हत्या का पाप मेरे सिर पर मत चढ़ाओ, चाहती हूँ मात्र तुमसे समर्पण मन का। देह गान की गाथा में मुझको मत उलझाओ, मुझको मत उलझाओ। औरतें घर, ऑफिस या सार्वजनिक स्थल पर कहीं भी हिंसा का शिकार हो सकती हैं, लेकिन अपनों के द्वारा घर पर ही की जाने वाली घरेलू हिंसा के दायरे में आती हैं। जरूरी नहीं शारीरिक चोट ही हिंसा है, बल्कि किसी भी औरत को अपशब्द बोलना, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करना भी हिंसा है। कहते हैं शब्दों की मार तो शारीरिक मार से भी ज्यादा गहरी होती है। शरीर के जख्म तो भर जाते हैं, परंतु मन पर लगे जख्मों को भरने में बहुत समय लग जाता है।
5: दुनिया भर में लैंगिक असमानता को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। कई लोगों का कहना है कि हमारे समाज की संरचना की वजह से ये लैंगिक भेदभाव ज्यादा फैलता है, परंतु बेटे की चाह में औरत को दिया जाने वाला मानसिक दबाव और प्रताड़ना सच में हमारे सभ्य समाज का एक शर्मनाक पहलू है। आइए आपको ले चलते हैं बिमला जी के घर, जहां उनकी बहू नेहा गर्भवती है।

0: नेहा, अरे ओ नेहा, सुनती क्यों नहीं हो तुम? नेहा,
1: क्या हुआ मम्मी जी?
0: कहाँ थी तुम?
1: मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी।
0: बस पूरा दिन आराम आराम आराम, जीना हराम करके रख दिया है हमारा।
1: लेकिन मम्मी जी, आराम नहीं करूंगी तो बच्ची को दिक्कत होगी।
0: क्या दिक्कत होगी? दिक्कत तो तब होगी ना जब लड़की होगी। चल डॉक्टर के पास।
1: डॉक्टर के पास किस लिए?
0: नेहा, मैंने कल भी बताया था कि जांच के लिए जाना है।
1: लेकिन मम्मी जी, जांच के लिए तो मैं कल ही गई थी ना।
0: मैं उस जांच की बात नहीं कर रही हूँ, लिंग जांच करवाना है।
1: ये क्या कह रही हैं मम्मी जी आप?
0: मुझे कुछ नहीं सुनना है। सीधा सीधा डॉक्टर के पास चलती हो या नहीं?
1: नहीं मम्मी जी, मैं लिंग जांच नहीं करवाऊंगी। ये बच्चा आपके बेटे का अंश है, आप कैसे बोल सकती हैं ये सब?
0: अच्छा, अब तुम मुझे समझाओगी कि क्या मुझे कहना चाहिए और क्या नहीं। सीधी तरह चलती हो या नहीं?
1: नहीं मम्मी जी, मैं नहीं जाऊंगी। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ।
0: सीधी तरह चलती हो कि नहीं?
1: नहीं मम्मी जी, मैं नहीं जाऊंगी।
0: देखो नेहा, मैंने पास के मोहल्ले वाले डॉक्टर से बात कर रखी है। लड़का हुआ तब तो ठीक है, अगर लड़की हुई तो यही किस्सा खत्म कर दूंगी।
1: मैं ऐसा नहीं होने दूंगी मम्मी जी, ये मेरे शरीर का हिस्सा है। मात्र लिंग की वजह से आप उसे मुझसे अलग कर देंगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।
0: चलो नेहा।
1: नहीं मम्मी जी।
0: चलती हो कि नहीं?
1: नहीं मम्मी जी, मुझे नहीं जाना।
0: तुम सीधी तरह चलती हो कि नहीं?
1: छोड़ दीजिए मुझे, मुझे नहीं जाना कहीं भी।
0: चलो नेहा।
1: छोड़ो मुझे।
0: अरे सीधी तरह चलती हो कि नहीं, वरना मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी।
2: अरे माँ, पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो? नेहा गर्भवती है, उसको या बच्चे को कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और आप ऐसा कर भी कैसे सकती हैं माँ? किस तरह से आप उसके साथ जबरदस्ती कर रही हैं? इस हालत में इसके साथ खींचातानी करना कोई अच्छी बात है, कोई सही बात है? माँ आप ऐसा कैसे कर सकती हो?
0: तो तुम ही बताओ क्या करूँ मैं?
2: अरे माँ, करना क्या है, तुम परेशान किस लिए हो ये तो बताओ।
0: तो तुम क्या चाहते हो, इस बार भी इसको बेटी पैदा करने दूँ?
2: अरे माँ, फिर क्या हो गया, आप इतना क्यों भड़क रही हो?
0: भड़कू नहीं तो और क्या करूँ? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये पहले भी दो लड़कियाँ पैदा कर चुकी है?
2: तो माँ इसमें इसका क्या कसूर है, आप ही बताओ, ये कोई इसके हाथ में थोड़ी ना है।
0: तो किसका कसूर है? मेरा? सच कहती हूँ बेटा, अगर इसने इस बार भी बेटी पैदा की ना तो सीधा के सीधा मायके भेज दूंगी, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए।
2: अरे माँ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, किस लिए इतना भड़क रही हो? शांत होके बैठ तो जाओ माँ, लो बैठो कुर्सी में।
0: देखो बेटा, मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। अगर लड़का नहीं होगा तो वंश आगे कैसे चलेगा?
2: देखो माँ, पहली बात तो ये कि बेटा होगा या बेटी, अभी से ये बहस क्यों कर रहे हो? क्यों आप इतना परेशान हो रहे हो कि बेटा ही चाहिए, बेटा ही चाहिए, आखिर क्यों माँ?
0: तो बहस नहीं करूँ और क्या करूँ, तुम ही बताओ।
2: माँ सुनो ना, जो भी होगा उसको हम प्यार से अपनाएंगे ना, किस लिए इतना परेशान होना माँ, क्यों आखिर?
1: अरुण, मैं भी माँ को यही समझा रही हूँ।
0: नेहा तुम चुप करो, हम दोनों बात कर रहे हैं ना।
2: अरे माँ क्यों भड़क रही हो नेहा पर तुम? नेहा तुम चलो आराम करो, और तुम कोई भी टेंशन मत लेना। सुनो, माँ की बात का ना बुरा नहीं मानते, तुम इस अवस्था में अगर टेंशन लोगी तो बच्चे पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। चलो आराम से तुम अपने रूम में सो जाओ।
1: लेकिन अरुण, माँ तो अभी भी नहीं मान रही है।
2: अरे नेहा तुम चिंता मत करो, मैं समझाता हूँ माँ को, वो समझ जाएंगी। माँ, माँ, अरे ओ माँ।
0: क्या है बोलो।
2: माँ सुनो तो सही।
0: क्या सुनो, अब सुनने को रह क्या गया है?
2: माँ तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो?
0: देखो बेटा, मैं तुम दोनों के भले के लिए ही बोल रही हूँ। बेटा होगा तो वंश तभी तो आगे बढ़ पाएगा।
2: माँ सुनो ना, तुम भी कितनी भोली हो। देखो माँ, बेटा हो या बेटी, ये दोष औरत को क्यों देते हैं हम? औरत का इसमें कोई भी दोष नहीं है, पता है माँ तुम्हें? सबसे बड़ी भूल है हम सब की ये कि अगर बेटी हुई है तो ये औरत का दोष है, ऐसा कुछ भी नहीं होता माँ।
0: तो फिर किसका दोष होता है, तुम ही बता दो।
2: माँ, बेटा या बेटी पैदा करने का समर्थ्य केवल और केवल पुरुष के पास होता है।
0: ये तुम क्या कह रहे हो बेटा, ये कैसे हो सकता है, तुम ये कैसे कह सकते हो?
2: अरे मेरी भोली माँ, सही कह रहा हूँ।
0: तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम लोगों का बुरा चाहूंगी?
2: अरे माँ सुनो, पुरुष के पास एक्स के साथ वाई क्रोमोसोम होते हैं, औरत के पास केवल एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। पुरुष का एक्स और औरत का एक्स मिलकर बेटी को जन्म देते हैं, और पुरुष का वाई और औरत का एक्स मिलकर जो है ना माँ, वो बेटे के जन्म को मिलकर निर्धारण करते हैं। माँ तुम्हें पता है, ये एक वैज्ञानिक सच्चाई है जिससे बहुत से लोग जो है वो अनजान है। बहुत से लोग इस वैज्ञानिक सच्चाई को नहीं जानते हैं माँ, और मेरी भोली माँ तुम भी उनमें से एक हो। तुम भी ये वैज्ञानिक सच्चाई नहीं जानती हो, इसलिए तुम इस तरह से नेहा के साथ बिहेव कर रही हो, इस तरह से उसको डरा रही हो, उसको धमका रही हो। माँ अब मैं आशा करता हूँ कि तुम ये सारी बातें समझ गई होंगी। माँ क्या मैं ठीक कह रहा हूँ, क्या तुम समझ गई हो?
0: अरे बेटा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या तुम बोल रहे हो?
1: नमस्ते माता जी, और कैसी हैं आप?
0: नमस्ते नमस्ते, ठीक ही हूँ।
1: क्या हुआ माता जी, कुछ परेशान लग रही हैं आप?
0: ये बात जाके अपनी बहन से पूछो।
1: माता जी आखिर बात क्या है, कुछ हुआ है क्या घर पे?
0: होने को क्या है, तुम बहनों का बस चले तो तुम लोग मुझे जहर दे के मार डालो।
1: अरे माता जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अच्छा छोड़िए, ये बताइए नेहा कहाँ है?
0: कमरे में होगी, खुद जाके देख लो।
2: अरे माँ तुम सुबह से गुस्सा होके बैठी हो, अभी तक देखो आपने मुंह फुला के रखा हुआ है। ऐसी भी क्या बात होगी है माँ, अब क्यों गुस्सा हो? अब तो अपना गुस्सा ठंडा करो, अब तो अपने गुस्से को कम से कम आप शांत करो।
0: शांत क्या, खाक होना है? पहले एक थी अब दूसरी भी आ गई, अब दोनों कर रही होंगी चुगलियाँ मेरी।
2: अरे माँ तुम ऐसा क्यों सोच रही हो?
0: इसमें सोचना क्या, ऐसा ही है।
2: ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, मैंने ही बुलाया था, और वो उसकी देखभाल करेगी ना माँ, तुम इतना क्यों सोच रही हो?
0: हमने कोई कमी रखी है देखभाल में?
2: माँ मैं कब कह रहा हूँ कि हमने कमी रखी है, हमने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन फिर भी मैंने ही बुलाया था आशा को।
0: बड़ा ही अच्छा किया तुमने उसको बुलाकर,

0: अरे नेहा, तुम रो क्यों रही हो? हुआ क्या है?
1: दीदी।
0: अरे नेहा, ये चल क्या रहा है? यहाँ तुम रो रही हो, बाहर तुम्हारी सास चिल्ला रही है, बात क्या है?
1: क्या बताऊं दीदी, पिछले 3 हफ्ते से मेरे पीछे पड़े हैं, लिंग जांच करा। आप ही बताओ, इस नन्ही सी जान का क्या कसूर है? लड़का होगा या लड़की, है तो हमारा ही अंश ना।
0: अरे ये क्या चल रहा है इस घर में नेहा? अरे लड़का हो या लड़की, इस बात पे इस घर में इतनी परेशानी? और जीजा जी का क्या कहना है इस बारे में?
1: वो तो पूरी तरह से मेरा साथ दे रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है लड़का हो या लड़की। लेकिन मम्मी जी ने मेरा हाल बुरा कर दिया है, मुझे सोने नहीं देती, खाने नहीं देती, बैठने नहीं देती। मैं परेशान हो गई हूँ रोज रोज की लड़ाई से।
0: अरे तो अरुण ने उन्हें समझाया नहीं क्या?
1: वो समझा चुके हैं पहले से, लेकिन वो किसी की बात सुनने के लिए राजी तक नहीं है। आप तो जानते ही हो, ये बुजुर्ग लोग किसी की बात सुनते कहाँ हैं।
0: अच्छा नेहा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी सास से बात करती हूँ। एक बार तो उन्हें समझाना ही पड़ेगा। अरे लिंग जांच अपने आप में अपराध है, हम ये अपराध तो नहीं होने दे सकते ना?
1: हाँ दीदी बिल्कुल, मैं तो इस बच्चे के लिए तैयार भी नहीं थी, इनके कहने से मैंने ये देखा है। लेकिन अब लिंग जांच की बात, ये कहाँ तक सही है?
0: अरे नेहा तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी सास से बात करते हैं, क्योंकि बात करना इस वक्त बहुत जरूरी है।
2: लो आ गई अब दोनों।
0: अरे माँ जी, आप इतनी गुस्से में क्यों हैं? आखिर हुआ क्या है?
2: क्यों, तुम्हारी बहन ने नहीं बताया?
0: उसने तो बता दिया है, पर अब आपसे जानना चाहती हूँ, आप इतनी गुस्से में क्यों हैं?
2: देखो आशा, मैंने इनको भी पहले बता के

0: पे भरोसा ना हो तो किसी और से पूछ लीजिए, लेकिन अगर आप लिंग जांच करवाएंगी तो जेल जाना तो पक्का है।
1: अरुण देख बेटा, ये आशा कह क्या रही है?
2: अरे माँ, आशा बिल्कुल ठीक कह रही है। आशा की बात मान लेते हैं, नहीं तो हम दोनों को जेल में जाकर चक्की पीसने पड़ेगी।
0: जी हाँ माँ जी, सोच लीजिए, अभी भी वक्त है आपके पास। अगर आपने लिंग जांच करवाई तो अब रिपोर्ट मैं करूँगी।
2: अरे माँ सोच लो, जेल जाना है या लिंग जांच करवाना है?
1: अरे नहीं नहीं, दोनों में से कुछ भी नहीं करवाना, मुझे बस माफ करो तुम।
0: ठीक है माँ जी, बहुत अच्छी बात है। तो नेहा, अब तुम्हारे बेबी शावर की तैयारियां करें।
3: हाँ हाँ जरूर।

0: यहाँ तो सब ठीक हो गया, परंतु हर घर की परिस्थिति ऐसी नहीं होती। ज्यादातर घरों में लड़की पैदा हुई है ये सुनकर ही सांप सूंघ जाता है। आज के बदलते युग में लड़कियां किसी भी मामलों में लड़कों से कम नहीं है, परंतु समाज में आज भी कई ऐसे लोग हैं जो बेटे की चाहत में बेटियों को फूटी आंख भी देखना पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि बेटी होने के लिए औरत को प्रताड़ित भी किया जाता है, जबकि इसका सीधा सीधा संबंध पुरुष से होता है। आमतौर पर भारतीय परिवारों में बेटा होने पर जो जश्न मनाया जाता है या बेटी होने पर बहुत ही कम देखने को मिलता है। हम तो कहते हैं भाई, बेटा हो या बेटी, दोनों ही परिवार के जरूरी अंग है। बस बच्चा स्वस्थ और हिष्ट पुष्ट होना चाहिए, दोनों के ही बिना परिवार अधूरा है। दोनों की किलकारियां एक सी हैं, प्यार दोनों के ही साथ एक सा है, फिर दिलों में सिर्फ बेटे की चाह क्यों, बेटे की चाहत क्यों नहीं, है ना? सोचने वाली बात।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, जिनमें एक बच्ची की फरियाद दर्शाई गई है। आइए सुनाती हूँ। मुझे पुरुष के बराबर हक दिलाने की बात जाने चल रही है कब से, पर एक बात मैं कहना चाहती हूँ आप सबसे। रात के अंधेरे में भी चल सकूंगी जब मैं बेखौफ, सम्मानता तो तभी होगी जब नहीं सताएगा मुझे कोई खौफ। लड़की हो ये कहकर नहीं किया जाएगा कोई भेदभाव, भाई की इच्छाओं के आगे जबरन नहीं स्वीकारना होगा मुझे कोई अभाव। सिर्फ कानून ही नहीं दिला सकता मुझे सम्मानता का अधिकार, इसके लिए जरूरी है संकीर्ण मानसिकता का बहिष्कार, इसके लिए जरूरी है संकीर्ण मानसिकता का बहिष्कार।
0: अक्सर बात होती है कि बदलाव हो रहा है, लेकिन जब एक बच्ची महिला अपने अस्तित्व के लिए आवाज उठाती है तो समाज की कड़वी सच्चाई सामने आती है कि बदलाव सिर्फ एक साथ काम करना या कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना नहीं है, बल्कि मानसिकता में बदलाव होना असली विकास है। उम्मीद है कि इस कार्यक्रम से हम सबको कुछ न कुछ सीख मिली होगी और आने वाले समय में हम सब इस बदलाव का हिस्सा जरूर बनेंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सब श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर आधारित हिंसा को नो कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, स्मार्ट के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और हमारे रेडियो स्टेशन द्वारा जो बनाए गए विशेष कार्यक्रम दूसरे स्टेशन भी समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.

0: माँ क्या कहती थी?
1: कहती क्या थी, बस काजल का टीका माथे पर लगाकर बलैया लेती थी कि उसके लाडले को किसी की नजर न लग जाए।
0: जानते हैं बाबूजी, श्याम सांवरे भी अपनी माँ से ऐसा ही पूछा करते थे।
1: क्या

0: बिल्कुल ठीक जवाब दिया यशोदा मैया ने। अब समझ में आया कि मुझ पे भी मेरी रूपा की कजारी आंखों का ही रंग चढ़ गया।
1: जी बाबूजी, क्यों झूठा दोष देते हैं मुझे?
0: इसमें झूठ क्या है? जब देखो घूमती रहती हो मुझे, तुम्हीं ने तो जादू डाला है मुझ पे।

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हो जाने पर 6 से 8 महीने का उपचार करवाना होता है, लेकिन अगर इलाज बीच में रोक दिया तो टीबी बिगड़ सकता है और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बन सकता है। DRTB तब होता है जब टीबी की कुछ दवा असर करना बंद कर दे। DRTB का इलाज कठिन और लंबा है, लेकिन मुमकिन है। आधुनिक जाँच और इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हिंसा को नो। इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं, उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम, जिसका नाम है हिंसा को नो, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और ऐसे विशेष कार्यक्रम हमारे स्टेशन पर जो बनाए गए हैं, दूसरे स्टेशन समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
4: जी हाँ, मैं यानी मीनाक्षी आपके लिए लेकर आई हूँ विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो। ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण पर आधारित है और इस कार्यक्रम को स्मार्ट संस्था, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, उनके सहयोग से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला हिंसा के विभिन्न पहलुओं को उजागर करना व उन्हें सशक्त करना, ताकि वो इससे मुक्ति की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा सके। महिलाओं में गैर बराबरी की स्थिति का वर्णन करती आज की कहानी हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। तो आइए सुनते हैं ये कहानी।
5: स्त्री हूँ मैं, मुझे देवी मत बनाओ, झूठी शान की बलि वेदी पर मुझे मत चढ़ाओ। सशक्त हूँ मैं, मुझे अबला मत बनाओ, हर महीने रक्तिम होना नियति है मेरी, अंधविश्वासों की जंजीरों में ना मुझे उलझाओ। उड़ना है मुझे भी उन्मुक्त गगन में, भ्रूण हत्या का पाप मेरे सिर पर मत चढ़ाओ। चाहती हूँ मात्र तुमसे समर्पण मन का, देह गान की गाथा में मुझको मत उलझाओ, मुझको मत उलझाओ। औरतें घर, ऑफिस या सार्वजनिक स्थल पर कहीं भी हिंसा का शिकार हो सकती हैं, लेकिन अपनों के द्वारा घर पर ही की जाने वाली घरेलू हिंसा के दायरे में आती हैं। जरूरी नहीं शारीरिक चोट ही हिंसा है, बल्कि किसी भी औरत को अपशब्द बोलना, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करना भी हिंसा है। कहते हैं शब्दों की मार तो शारीरिक मार से भी ज्यादा गहरी होती है। शरीर के जख्म तो भर जाते हैं, परंतु मन पर लगे जख्मों को भरने में बहुत समय लग जाता है।
4: दुनिया भर में लैंगिक असमानता को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। कई लोगों का कहना है कि हमारे समाज की संरचना की वजह से ये लैंगिक भेदभाव ज्यादा फैलता है, परंतु बेटे की चाह में औरत को दिया जाने वाला मानसिक दबाव और प्रताड़ना सच में हमारे सभ्य समाज का एक शर्मनाक पहलू है। आइए आपको ले चलते हैं बिमला जी के घर, जहां उनकी बहू नेहा गर्भवती है

0: नेहा, अरे ओ नेहा, सुनती क्यों नहीं हो तुम? नेहा,
1: क्या हुआ मम्मी जी?
0: कहाँ थी तुम?
1: मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी।
0: बस पूरा दिन आराम आराम आराम, जीना हराम करके रख दिया है हमारा।
1: लेकिन मम्मी जी, आराम नहीं करूंगी तो बच्ची को दिक्कत होगी।
0: क्या दिक्कत होगी? दिक्कत तो तब होगी ना जब लड़की होगी। चल डॉक्टर के पास।
1: डॉक्टर के पास किस लिए?
0: नेहा, मैंने कल भी बताया था कि जांच के लिए जाना है।
1: लेकिन मम्मी जी, जांच के लिए तो मैं कल ही गई थी ना।
0: मैं उस जांच की बात नहीं कर रही हूँ, लिंग जांच करवाना है।
1: ये क्या कह रही हैं मम्मी जी आप?
0: मुझे कुछ नहीं सुनना है, सीधा सीधा डॉक्टर के पास चलती हो या नहीं?
1: नहीं मम्मी जी, मैं लिंग जांच नहीं करवाऊंगी। ये बच्चा आपके बेटे का अंश है, आप कैसे बोल सकती हैं ये सब?
0: अच्छा, अब तुम मुझे समझाओगी कि क्या मुझे कहना चाहिए और क्या नहीं। सीधी तरह चलती हो या नहीं?
1: नहीं मम्मी जी, मैं नहीं जाऊंगी। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ।
0: सीधी तरह चलती हो कि नहीं?
1: नहीं मम्मी जी, मैं नहीं जाऊंगी।
0: देखो नेहा, मैंने पास के मोहल्ले वाले डॉक्टर से बात कर रखी है। लड़का हुआ तब तो ठीक है, अगर लड़की हुई तो यही किस्सा खत्म कर दूंगी।
1: मैं ऐसा नहीं होने दूंगी मम्मी जी, ये मेरे शरीर का हिस्सा है। मात्र लिंग की वजह से आप उसे मुझसे अलग कर देंगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।
0: चलो नेहा।
1: नहीं मम्मी जी।
0: चलती हो कि नहीं?
1: नहीं मम्मी जी, मुझे नहीं जाना।
0: तुम सीधी तरह चलती हो कि नहीं?
1: छोड़ दीजिए मुझे, मुझे नहीं जाना कहीं भी।
0: चलो नेहा।
1: छोड़ो मुझे।
0: अरे सीधी तरह चलती हो कि नहीं, वरना मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी।
2: अरे माँ, पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो? नेहा गर्भवती है, उसको या बच्चे को कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और आप ऐसा कर भी कैसे सकती हैं माँ? किस तरह से आप उसके साथ जबरदस्ती कर रही हैं? इस हालत में इसके साथ खींचातानी करना कोई अच्छी बात है? हालत में इसके साथ खींचातानी करना कोई अच्छी बात है, कोई सही बात है? माँ आप ऐसा कैसे कर सकती हो?
0: तो तुम ही बताओ क्या करूँ मैं?
2: अरे माँ, करना क्या है, तुम परेशान किस लिए हो ये तो बताओ।
0: तो तुम क्या चाहते हो, इस बार भी इसको बेटी पैदा करने दूं?
2: अरे माँ, फिर क्या हो गया, आप इतना क्यों भड़क रही हो?
0: भड़कू नहीं तो और क्या करूं? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये पहले भी दो लड़कियां पैदा कर चुकी है?
2: तो माँ इसमें इसका क्या कसूर है, आप ही बताओ, ये कोई इसके हाथ में थोड़ी ना है।
0: तो किसका कसूर है, मेरा? सच कहती हूँ बेटा, अगर इसने इस बार भी बेटी पैदा की ना, तो सीधा के सीधा मायके भेज दूंगी, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए।
2: अरे माँ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, किस लिए इतना भड़क रही हो? शांत होके बैठ तो जाओ माँ, लो बैठो कुर्सी में।
0: देखो बेटा, मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ, अगर लड़का नहीं होगा तो वंश आगे कैसे चलेगा?
2: देखो माँ, पहली बात तो ये कि बेटा होगा या बेटी, अभी से ये बहस क्यों कर रहे हो? क्यों आप इतना परेशान हो रहे हो कि बेटा ही चाहिए, बेटा ही चाहिए, आखिर क्यों माँ?
0: तो बहस नहीं करूं और क्या करूं, तुम ही बताओ।
2: माँ सुनो ना, जो भी होगा उसको हम प्यार से अपनाएंगे ना, किस लिए इतना परेशान होना माँ, क्यों आखिर?
1: अरुण, मैं भी माँ को यही समझा रही हूँ।
0: नेहा तुम चुप करो, हम दोनों बात कर रहे हैं ना।
2: अरे माँ क्यों भड़क रही हो नेहा पर तुम? नेहा तुम चलो आराम करो, और तुम कोई भी टेंशन मत लेना। सुनो, माँ की बात का ना बुरा नहीं मानते, तुम इस अवस्था में अगर टेंशन लोगी तो बच्चे पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। चलो आराम से तुम अपने रूम में सो जाओ।
1: लेकिन अरुण, माँ तो अभी भी नहीं मान रही है।
2: अरे नेहा तुम चिंता मत करो, मैं समझाता हूँ माँ को, वो समझ जाएंगी। माँ, माँ, अरे ओ माँ।
0: क्या है बोलो।
2: माँ सुनो तो सही।
0: क्या सुनो, अब सुनने को रह क्या गया है?
2: माँ तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो?
0: देखो बेटा, मैं तुम दोनों के भले के लिए ही बोल रही हूँ, बेटा होगा तो वंश तभी तो आगे बढ़ पाएगा।
2: माँ सुनो ना, तुम भी कितनी भोली हो। देखो माँ, बेटा हो या बेटी, ये दोष औरत को क्यों देते हैं हम? औरत का इसमें कोई भी दोष नहीं है, पता है माँ तुम्हें? सबसे बड़ी भूल है हम सबकी ये कि अगर बेटी हुई है तो ये औरत का दोष है। ऐसा कुछ भी नहीं होता माँ।
0: तो फिर किसका दोष होता है, तुम ही बता दो।
2: माँ, बेटा या बेटी पैदा करने का समर्थ्य केवल और केवल पुरुष के पास होता है।
0: ये तुम क्या कह रहे हो बेटा, ये कैसे हो सकता है, तुम ये कैसे कह सकते हो?
2: अरे मेरी भोली माँ, सही कह रहा हूँ।
0: तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम लोगों का बुरा चाहूंगी?
2: अरे माँ सुनो, पुरुष के पास एक्स के साथ वाई क्रोमोजोन होते हैं, औरत के पास केवल एक्स एक्स क्रोमोजोन होते हैं। पुरुष का एक्स और औरत का एक्स मिलकर बेटी को जन्म देते हैं, और पुरुष का वाई और औरत का एक्स मिलकर जो है ना माँ, वो बेटे के जन्म को मिलकर निर्धारण करते हैं। माँ तुम्हें पता है, ये एक वैज्ञानिक सच्चाई है जिससे बहुत से लोग जो है वो अनजान है। बहुत से लोग इस वैज्ञानिक सच्चाई को नहीं जानते हैं माँ, और मेरी भोली माँ तुम भी उनमें से एक हो।

0: भी ये वैज्ञानिक सच्चाई नहीं जानती हो, इसलिए तुम इस तरह से नेहा के साथ बिहेव कर रही हो, इस तरह से उसको डरा रही हो, उसको धमका रही हो। माँ, अब मैं आशा करता हूँ कि तुम ये सारी बातें समझ गई होंगी। माँ, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? क्या तुम समझ गई हो?
1: अरे बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या तुम बोल रहे हो?
2: नमस्ते माता जी, और कैसी हैं आप?
1: नमस्ते नमस्ते, ठीक ही हूँ।
2: क्या हुआ माता जी, कुछ परेशान लग रही हैं आप?
1: ये बात जाके अपनी बहन से पूछो।
2: माता जी, आखिर बात क्या है, कुछ हुआ है क्या घर पे?
1: होने को क्या है, तुम बहनों का वश चले तो तुम लोग मुझे जहर दे के मार डालो।
2: अरे माता जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अच्छा छोड़िए, ये बताइए नेहा कहाँ है?
1: कमरे में होगी, खुद जाके देख लो।
0: अरे माँ, तुम सुबह से गुस्सा होके बैठी हो, अभी तक देखो आपने मुंह फुला के रखा हुआ है, ऐसी भी क्या बात होगी है माँ? अब क्यों गुस्सा हो, अब तो अपना गुस्सा ठंडा करो, अब तो अपने गुस्से को कम से कम आप शांत करो।
1: शांत क्या, खाक होना है, पहले एक थी अब दूसरी भी आ गई, अब दोनों कर रही होंगी चुगलियाँ मेरी।
0: अरे माँ, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो?
1: इसमें सोचना क्या, ऐसा ही है।
0: ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, मैंने ही बुलाया था, और वो उसकी देखभाल करेगी ना माँ, तुम इतना क्यों सोच रही हो?
1: हमने कोई कमी रखी है देखभाल में?
0: माँ, मैं कब कह रहा हूँ कि हमने कमी रखी है, हमने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन फिर भी मैंने ही बुलाया था आशा को।
1: बड़ा ही अच्छा किया तुमने उसको बुलाकर,

0: अरे नेहा, तुम रो क्यों रही हो? हुआ क्या है?
1: दीदी।
0: अरे नेहा, ये चल क्या रहा है? यहाँ तुम रो रही हो, बाहर तुम्हारी सास चिल्ला रही है, बात क्या है?
1: क्या बताऊं दीदी, पिछले 3 हफ्ते से मेरे पीछे पड़े हैं, लिंग जांच करा। आप ही बताओ, इस नन्ही सी जान का क्या कसूर है? लड़का होगा या लड़की, है तो हमारा ही अंश ना।
0: अरे ये क्या चल रहा है इस घर में नेहा? अरे लड़का हो या लड़की, इस बात पे इस घर में इतनी परेशानी? और जीजा जी का क्या कहना है इस बारे में?
1: वो तो पूरी तरह से मेरा साथ दे रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है लड़का हो या लड़की। लेकिन मम्मी जी ने मेरा हाल बुरा कर दिया है, मुझे सोने नहीं देती, खाने नहीं देती, बैठने नहीं देती। मैं परेशान हो गई हूँ रोज रोज की लड़ाई से।
0: अरे तो अरुण ने उन्हें समझाया नहीं क्या?
1: वो समझा चुके हैं पहले से, लेकिन वो किसी की बात सुनने के लिए राजी तक नहीं है। आप तो जानते ही हो, ये बुजुर्ग लोग किसी की बात सुनते कहाँ हैं।
0: अच्छा नेहा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी सास से बात करती हूँ। एक बार तो उन्हें समझाना ही पड़ेगा। अरे लिंग जांच अपने आप में अपराध है, हम ये अपराध तो नहीं होने दे सकते ना?
1: हाँ दीदी बिल्कुल, मैं तो इस बच्चे के लिए तैयार भी नहीं थी, इनके कहने से मैंने ये देखा है। लेकिन अब लिंग जांच की बात, ये कहाँ तक सही है?
0: अरे नेहा तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी सास से बात करते हैं, क्योंकि बात करना इस वक्त बहुत जरूरी है।
2: लो आ गई अब दोनों।
0: अरे माँ जी, आप इतनी गुस्से में क्यों हैं? आखिर हुआ क्या है?
2: क्यों, तुम्हारी बहन ने नहीं बताया?
0: उसने तो बता दिया है, पर अब आपसे जानना चाहती हूँ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं?
2: देखो आशा, मैंने इनको भी पहले बता के रखा है और तुम्हें भी बता रही थी कि मुझे इस बार लड़का ही चाहिए।
0: तो माँ जी, अगर आपको लड़का चाहिए, इसमें मेरी बहन क्या कर सकती है?
2: बस बस, अब तुम भी मुझे समझाना बंद करो।
0: देखिए माँ जी, ये मैं नेहा से सुन चुकी हूँ कि आप लिंग जांच करवाना चाहती हैं इसकी। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बता दूँ, आप खुशी से कर सकती हैं, लेकिन उसके बाद जेल जाने के लिए भी बिल्कुल तैयार रहिए आप।
2: अरे अरे जेल?
0: जी हाँ जेल, और सिर्फ आप अकेली नहीं जाएंगी, आपके बेटा भी जाएंगे, और वहाँ पर बैठ के आप दोनों चक्की पीसने वाले हैं, ये बात याद रखिएगा।
2: अरे अब ऐसा भी कौन सा अपराध कर दिया मैंने जब जेल जाना पड़े?
0: अपराध तो आप कर रही हैं, लिंग जांच करवाना बहुत बड़ा अपराध है। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा ना हो तो किसी और से पूछ लीजिए, लेकिन अगर आप लिंग जांच करवाएंगी तो जेल जाना तो पक्का है।
2: अरुण देख बेटा, ये आशा कह कह रही है।
3: अरे माँ, आशा बिल्कुल ठीक कह रही है, आशा की बात मान लेते हैं, नहीं तो हम दोनों को जेल में जाकर चक्की पीसने पड़ेगी।
0: जी हाँ माँ जी, सोच लीजिए, अभी भी वक्त है आपके पास, अगर आपने लिंग जांच करवाई तो अब रिपोर्ट मैं करूँगी।
3: अरे माँ सोच लो, जेल जाना है या लिंग जांच करवाना है?
2: अरे नहीं नहीं, दोनों में से कुछ भी नहीं करवाना, मुझे बस माफ करो तुम।
0: ठीक है माँ जी, बहुत अच्छी बात है। तो नेहा, अब तुम्हारे बेबी शावर की तैयारियां करें।
4: हाँ हाँ जरूर।

0: यहाँ तो सब ठीक हो गया, परंतु हर घर की परिस्थिति ऐसी नहीं होती। ज्यादातर घरों में लड़की पैदा हुई है ये सुनकर ही सांप सूंघ जाता है। आज के बदलते युग में लड़कियां किसी भी मामलों में लड़कों से कम नहीं है, परंतु समाज में आज भी कई ऐसे लोग हैं जो बेटे की चाहत में बेटियों को फूटी आंख भी देखना पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि बेटी होने के लिए औरत को प्रताड़ित भी किया जाता है, जबकि इसका सीधा सीधा संबंध पुरुष से होता है। आमतौर पर भारतीय परिवारों में बेटा होने पर जो जश्न मनाया जाता है या बेटी होने पर बहुत ही कम देखने को मिलता है। हम तो कहते हैं भाई, बेटा हो या बेटी, दोनों ही परिवार के जरूरी अंग है। बस बच्चा स्वस्थ और हिष्ट पुष्ट होना चाहिए, दोनों के ही बिना परिवार अधूरा है। दोनों की किलकारियां एक सी हैं, प्यार दोनों के ही साथ एक सा है, फिर दिलों में सिर्फ बेटे की चाह क्यों, बेटे की चाहत क्यों नहीं, है ना? सोचने वाली बात।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, जिनमें एक बच्ची की फरियाद दर्शाई गई है। आइए सुनाती हूँ। मुझे पुरुष के बराबर हक दिलाने की बात जाने चल रही है कब से, पर एक बात मैं कहना चाहती हूँ आप सबसे। रात के अंधेरे में भी चल सकूंगी जब मैं बेखौफ, सम्मानता तो तभी होगी जब नहीं सताएगा मुझे कोई खौफ। लड़की हो ये कहकर नहीं किया जाएगा कोई भेदभाव, भाई की इच्छाओं के आगे जबरन।
2: हाय, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सकें। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है। आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं। अच्छा स्वभाव यानी कि गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल IQ तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड्स सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये एक ऐसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी का आदर बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही आदर सम्मान करने का भाव सिखाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं टाइम की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें अपना समय कब कहाँ खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और उस समय को बर्बाद करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं उरन विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 एफएम।
1: मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

राग मालकौंस। राग मालकौंस की उत्पत्ति भैरवी थाट से हुई है। इस राग में गंधार, धैवत और निषाद यानी ग, ध और नी, ये तीनों स्वर कोमल प्रयोग किए जाते हैं। इस राग में ऋषभ और पंचम अर्थात रे और प, ये दोनों स्वर वर्जित हैं, अर्थात इन दोनों स्वरों के प्रयोग इस राग में नहीं होते। इस प्रकार इसके आरोह और अवरोह में पांच पांच स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व औड़व है। इस राग का वादी स्वर मध्यम यानी म है और संवादी स्वर षडज यानी स है। इस राग का गायन समय रात्रि का तीसरा प्रहर है। यह गंभीर प्रकृति का राग है। राग मालकौंस के आरोह, अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह।

अब प्रस्तुत है राग मालकोंस की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है इस राग की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने सुनी राग मालकौंस की स्वर मालिका। अब सुनिए इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, नित भजिए हरि को निज मन से। पहले प्रस्तुत है इसकी स्थाई।

अभी आपने सुनी राग मालकौंस की स्वर मालिका, साथ ही सुनी इस स्वर मालिका पर आधारित रचना।

हे गाइस व्हाट्स अप, क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद

0: और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में।
1: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरी यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे। लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा, या यूं कहें कि पिचक जाएगा, या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। ये एक समस्या है, अब बात करते हैं इसी विषय में। पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो

राग शुद्ध कल्याण। राग शुद्ध कल्याण की उत्पत्ति कल्याण थाट से हुई है। इस राग में भूपाली और कल्याण इन दोनों रागों का समावेश है। अतः कुछ संगीतज्ञ इस राग को भूप कल्याण भी कहते हैं। इसमें तीव्र मध्यम यानी तीव्र म के अलावा शेष स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह में मध्यम और निषाद अर्थात म और नी ये दोनों वर्जित स्वर हैं, तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। परंतु अवरोह में इन दोनों स्वरों का अल्प प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़ संपूर्ण है। इसका वादी स्वर गंधार यानी ग है और संवादी स्वर धैवत यानी ध है। इसका गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। राग शुद्ध कल्याण के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए आरोह।

है राग शुद्ध कल्याण की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग शुद्ध कल्याण की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग शुद्ध कल्याण की स्वर मालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना। बोल है, इस माटी को करो प्रणाम। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं अरुण विजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: आज का पाठ है साफ सफाई रखना, दिमागी बुखार से बचना। तुम रोल नंबर एक,
2: साफ सफाई हो भरपूर, सुअर बाड़े घर से दूर।
1: अरे वाह। नंबर दो,
3: मच्छर चूहे और छछूंदर आने ना दो घर के अंदर।
1: शाबाश। नंबर तीन,
2: बंद करो खुले में जाना, घर घर शौचालय बनवाना।
1: बढ़िया। रोल नंबर चार,
4: शौच करने या कराने के बाद साबुन पानी से धोना हाथ।
1: अरे वाह। तुम
2: हैंड पंप के आसपास से सब गंदगी निकालो, पीने वाले पानी में क्लोरीन की गोली डालो।
1: बिल्कुल ठीक। दिमागी बुखार जानलेवा है, ये ज्यादातर गंदगी से फैलता है। गांव और घर में साफ सफाई रखकर इससे बचा जा सकता है। चलो अब सब बच्चों के लिए ताली बजाते हैं।
5: बच्चे तो ये बात जानते हैं, आप भी जान लीजिए।

0: सुनना शारदा 90.8 FM।
1: राम राम दोस्त, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन, आपके साथ वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की हम कोशिश करते हैं एक खास प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है कम्युनिटी कनेक्ट। और इसके अंतर्गत हमने एक प्रोग्राम को नाम दिया है राब्ता, यानी कि हम एक खास मेहमान से राब्ता करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और वो अपने एक सब्जेक्ट के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं या जुड़ती हैं। जहां आप काम कर रहे होते हैं किसी भी संस्थान में, तो जाहिर सी बात है कि आप चाहते हैं बड़ा खुशनुमा माहौल रहे। अगर कहीं कोई दिक्कत या परेशानी आ जाती है तो सच बात तो यह है कि एक कमेटी होती है और कमेटी से जुड़े हुए लोग भी होते हैं। वो कमेटी क्या काम करती है, किस तरीके से काम करती है, इसी सब्जेक्ट पर बात करने के लिए आज मेरे साथ एक खास गेस्ट आप जुड़ रही हैं। आप हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर ICC यानी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की प्रिसाइडिंग ऑफिसर डॉक्टर एकता चौधरी। मैम सुनो शारदा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू मिस्टर गगन, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
1: मैम सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, जो हमने जिक्र किया ICC, ये है क्या?
2: इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो बनाई गई थी सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट के तहत, जो कि 2013 में लागू हुआ था, जिसको हम सब पॉश या GS कैश के नाम से भी जानते हैं। फिर 2017 में द नेम वाज फॉर्मुलेटेड एंड गिवन एज ICC, दैट इज इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। इसका जो मेन एजेंडा है वो है प्रोवाइड सेफ एंड कॉन्फिडेंशियल एंड फेयर सिस्टम जो सेक्सुअल हैरेसमेंट रिलेटेड इश्यूज एट वर्कप्लेस को हैंडल करे।
1: जी सोलिसिटर्स, मैं समझता हूँ कि इस बात को आप जान गए हैं, समझ गए हैं। हर कोई यही चाहता है कि अगर आप जिस जगह काम कर रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत परेशानी न हो, लेकिन जब कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आपको आपके राइट्स पता होना बहुत जरूरी है कि अगर परेशानी है तो इस परेशानी का हल कहाँ हो सकता है, किसके पास जाकर हो सकता है। क्या कोई इस तरीके की बॉडी बनी हुई है जहाँ हम अपनी बात रख पाए, कह पाए? तो मैम ने इसके बारे में अपनी बात रख दी। तो मैम मैं जब आगे बढ़ता हूँ तो बात निकल कर ये सामने आती है कि ये जो कमेटी है किस तरीके से काम करती है।
2: जो ICC कमेटी है इसमें जैसे कि पहले बताया हम मैंने कि इट वर्क्स ऑन प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल ऑफ एनी कंप्लेंट। सो तो इसमें एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है हु इज अ सीनियर वुमेन एम्प्लॉय, और एटलीस्ट दो मेंबर्स होते हैं जो फैकल्टी टीचिंग मेंबर्स होते हैं, दो नॉन टीचिंग मेंबर्स होते हैं, और इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है एक एक्सटर्नल मेंबर होता है जो कि किसी NGO से या जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए या फीमेल की लिए काम करता हो। और इसमें फिर तीन स्टूडेंट मेंबर्स भी होते हैं जिसमें कि एक ग्रेजुएट होता है, एक पोस्ट ग्रेजुएट होता है और एक रिसर्च स्कॉलर होता है।
1: जब आप स्टूडेंट्स का जिक्र कर रहे हैं तो उनका जो बायोडाटा है तो वो किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, यानी कि लॉ के ही होना जरूरी है या स्कूल ऑफ मीडिया के होना जरूरी है या डेंटल का होना जरूरी है या किसी भी फील्ड से आ सकते हैं?
2: नहीं, स्टूडेंट जो है वो किसी भी फील्ड से आ सकते हैं, पर उनका एक झुकाव और एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि वो इस क्षेत्र में कुछ काम करना या कुछ अपना योगदान देना चाहें। उस तरीके से हम स्टूडेंट का
1: इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। सो लिसनर्स, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ये जो बातों का सिलसिला है लगातार जारी है सिर्फ और सिर्फ सुरशादा 90.8 FM पर। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुरशादा 90.8 FM।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ कम्युनिटी कनेक्ट के प्रोग्राम के तहत हम राब्ता कर रहे हैं। आज हमारे साथ हमारी गेस्ट जुड़ी हुई हैं, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की प्रिसाइडिंग ऑफिसर आप हैं डॉक्टर एकता चौधरी, जो कि इस फील्ड की जानकार हैं, बहुत सीनियर हैं। और ये किस तरीके से काम करती है ये कमेटी, इसके बारे में हम मैम से जान रहे हैं। तो मैम, ब्रेक के इस पार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू गगन जी।
0: ब्रेक पर जाने से पहले हमने जाना कि ये कमेटी क्या है, किस तरीके से काम करती है। आपने हमें बताया कि इसमें कई लोग जुड़े होते हैं। जाहिर सी बात है कि जैसे कि आपके पास बहुत बड़ा अनुभव है, उस अनुभव के साथ आप आते हैं। स्टूडेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी अलग अलग फील्ड से हो सकते हैं, लेकिन एक जिज्ञासा होना बहुत ज़रूरी है कि वो इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं या यूँ कहें कि अपने अधिकारों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो मैं जो स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है उसके बारे में जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि क्या वाकई उनका इंटरेस्ट होता है या नहीं होता।
1: स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट होता है, पर यूजुअली जो केसेस हम सोच समझ के स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, जैसे कि अगर स्टूडेंट का कोई कंप्लेन आती है तो हम स्टूडेंट को इन्वॉल्व करते हैं। पर यदि अगर कोई सीनियर फैकल्टी की या फैकल्टी हो तो हम उसमें कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट ना रखा जाए। क्योंकि उसमें उस केस में ये होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, और कुछ लेवल ऐसे होते हैं जिसमें कि चीज़ें कई बार गलत साबित होती हैं। उस केस में हम नहीं चाहते कि स्टूडेंट को ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए। पर अदरवाइज वो किसी भी फील्ड का कोई भी स्टूडेंट जो थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हो और जिस जो कमिटेड हो वुमेन्स राइट के लिए हेल्प करने के लिए, उन स्टूडेंट्स को हम एनरोल करते हैं।
0: यानी कि अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं जो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि हमारे राइट्स क्या हैं, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा। अब मैं आपसे ये जानना समझना चाहता हूँ कि जब हम स्टूडेंट्स का जिक्र कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि कभी कभी झूठी बातें भी आपके सामने आती होंगी, तो उस समय आप कैसे उसको समझ पाती हैं कि ये गलत बात है, इसको हम यहाँ रोक सकते हैं, आपने झूठी बात रखी है। या कभी कभी कोई रिटर्न में आ जाती है, जैसे आप ऑफर हमें बता रही थी कि अगर बात आगे तक बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है कि उसमें इन्वॉल्वमेंट सभी का हो जाता है, एचआर होता है, आपका एक अलग भूमिका होती है, कभी कभी पुलिस या लॉ के अधिकारी भी जुड़ जाते हैं, तो वो क्या सीन होता है, किस तरीके से कंप्लेंट को आप लोग लेते हैं, हैंडल करते हैं।
1: आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गगन जी, ये बहुत ही आम सी बात है। ऐसे किस को बहुत सारे केसेस में होता है कि बच्चे को एक बार पहली बार में समझ नहीं आता कि वो एक्चुअली किस तरीके से और कहां तक कंप्लेंट ले जाना चाहता है। तो एक इसमें आईसीसी में एक है गाइडलाइंस में कि देयर इज अ वे टू फॉर अ कंसिलिएशन आल्सो। तो उस केस में हम स्क्रीनिंग कमिटी बनाते हैं पहले और दोनों पार्टीज को सुनते हैं, द कंप्लेनेंट एज वेल एज द रेस्ट्रेंट। तो उसमें ये होता है कि अगर हमें लगता है कि दोनों पार्टी आपस में सुलह करने के लिए तैयार हो जाती हैं, कई बार उनको समझ आ जाता है हमारी बात से ही या समझाने से, और उनको आपस में भी लगता है कि हमें आगे फर्दर कंप्लेन को बढ़ाने की या उस चीज को ले जाने की जरूरत नहीं है इतने सीरियस नोट पे, तो वो कंसीलिएशन के थ्रू उस कंप्लेन को वहीं की वहीं हम खत्म भी कर सकते हैं। पर अगर मैटर बहुत सीरियस होता है और हमें खुद लगता है तो हम उसको फिर आगे स्टेज ले जाते हैं।
0: ये तो रही एक बात, दूसरे पहलू को अगर मैं जानूं तो क्या आपने लोगों को दोस्त बनते हुए देखा है, अरे यार मैं नादान था, गलती कर गया, किसी ने मुझे उकसा दिया इस बात के लिए तो ये कंप्लेंट मैं लेकर आ गया या दर्ज करा दी।
1: हाँ ऐसा भी होता है, पर क्योंकि ये एक्चुअली केसेस जो होते हैं आईसीसी में सारे सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड ही आते
0: जी,
1: हैं
0: जी।
1: तो उस केस में ये है कि हम बहुत किसी भी चीज को ना नजरअंदाज या आप कहें कि हम उसको सीरियसली ना लें, वो नहीं हो पाता। पर कभी कभी कुछ केसेस में होता है कि बच्चे नादानी में थोड़ा सा चीज को सीरियस नोट पे ले जाके उसको बढ़ावा देने के लिए या किसी को डराना भी हो थोड़ा बहुत तो आके कंप्लेन कर देते हैं। पर उस केस में हमारी कोशिश यही रहती है कि फिर दोनों पार्टीज को थोड़ा थोड़ा समझाया जाए और बताया जाए कि ऐसे चीजें ना ले जाके आप उसको ठीक नोट पे भी एंड कर सकते हैं।
0: बहुत खूबसूरत। सोलिसिटर्स कहने का मतलब ये कि इन बातों को जानना समझना बहुत जरूरी है। एक अच्छे सब्जेक्ट के साथ हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एकता चौधरी से, जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं आईसीसी कमेटी शारदा विश्वविद्यालय से, और बहुत बड़े अनुभव के साथ मैम आती है और किस तरीके से ये कमेटी काम करती है, तो ये जानना समझना आपके लिए भी बहुत जरूरी है। ब्रेक के उस पार आएंगे तो बातों का जो सिलसिला है लगातार हम उसको कंटिन्यू करेंगे, जारी रखेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। सामुदायिक रेडियो स्टेशन का जब हम जिक्र करते हैं तो समुदाय की बातें होती हैं, आपकी बातें, हमारी बातें, और हर एक सब्जेक्ट पर हम यहां से बातें कर रहे होते हैं। आज ज्ञान विज्ञान की बातों के अलावा, पढ़ने पढ़ाने की बातों के अलावा, जिस सब्जेक्ट को हमने चुना है कॉलेज के समय में, ये जानना समझना बहुत जरूरी है जहां आप काम कर रहे हैं कि एक महिला के अधिकार क्या हैं। जब आप जान पाते हैं, समझ पाते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप अपनी बात को आगे लेकर जा पाते हैं और उसके बाद एक खुशनुमा माहौल आप महसूस करते हैं कि हाँ, ये वर्किंग प्लेस बहुत अच्छा है। और इसीलिए कहा जाता है कि वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा यूनिवर्सिटी। जी हाँ, शारदा यूनिवर्सिटी में स्कूल कॉलेजेस खुल चुके हैं और अच्छा माहौल यहाँ है, और यही वजह है कि दूर दराज से स्टूडेंट्स आते हैं। लेकिन जाने अनजाने में कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है तो एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है कि अपनी बात को हम आगे लेकर कहाँ जाएं। उस समय एक कमेटी काम करती है जिसका नाम है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। उसकी प्रेसाइडिंग ऑफिसर आप हैं डॉक्टर एकता चौधरी मैम। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये रूपरेखा बनानी पड़ती है, बहुत ज्यादा मैं बोल गया। मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वो क्या बात है, वो क्या आधार है जिसकी वजह से कंप्लेंट आपके सामने आती है। जैसे कि अमूमन मैं समझना चाहूंगा आपसे, या तो मैं ऊंचा सुर आपको लगा गया, या मैंने आपकी शान में और कुछ गुस्ताखी कर दी, या कुछ और। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि वो कंप्लेंट कौन कौन सी हो सकती है, ताकि जो लिसनर्स हैं वो अलर्ट रहें, स्टूडेंट्स भी अलर्ट रहें, या एक एम्प्लॉय भी अलर्ट रहे।
1: ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है गगन जी, इससे क्योंकि लोगों को कई बार बहुत चीजों को लेके गलत फहमी होती है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट के तहत या ICC के अंदर एक्चुअली क्या चीजें आती हैं जिसपे हम कंप्लेन कर सकते हैं। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है ना, सिर्फ फिजिकल हैरेसमेंट को ही नहीं माना जाता है कि आपने फिजिकली किसी के साथ कुछ गलत किया है तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट में आएगा, नहीं। और बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि अगर आप अनवेलकम कोई फिजिकल एडवांसमेंट भी दिखाते हैं, या कोई रिक्वेस्ट या कोई एक्स्ट्रा फेवर्स भी किसी से मांगते हैं, तो वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है। और पासिंग सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क्स,
0: जी,
1: आप अगर किसी को सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स भी

0: तो दोस्त आपके बहुत ज्यादा होंगे या बहुत ही लिमिटेड होंगे, कैसा है आपका अनुभव?
1: नहीं नहीं हा? बहुत पॉजिटिवली लेते हैं हमारे लिए काम जरूर ऐसा है, पर हम चीजों को इट्स नॉट दैट, एक होता है ना, हम वी ट्राई टू पैसिफाई, इट्स नॉट लाइक एग्जैजरेटिंग. कुछ चीजें होती है हमें पता है, आजकल की तो आप नॉर्मल टोन में भी आप देखेंगे बच्चों की आम भाषा ही यही हो गई है.
0: मैम ये तो आपने
1: बहुत, हम अगर हर चीज को अगर इसमें करने, क्योंकि अब्यूजिव लैंग्वेज ऑल्सो कम्स अंडर दिस सेक्सुअल हैरेसमेंट. अगर हम अब्यूजिव लैंग्वेज को देखें तो बच्चे आजकल आपस में नॉर्मल टोन में ही इसी भाषा में बात करते,
0: जबकि बहुत गलत है. हाँ. क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक समझने की कोशिश करते हैं कि किस माहौल से आप आते हैं, किस परिवेश में आप रहते हैं, या किस तरीके से आपकी परवरिश हुई है. एक इशारा भी है कि आप गाली गलौज से अपने आप को दूर रखिए. निश्चित तौर पर आप नहीं चाहते कि आपके सामने कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे, आप नहीं चाहते कि आपके परिवार, जहां आपकी माँ हो, बहन हो, उनके सामने कोई इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करे. सो प्लीज आप अपने बारे में अलर्ट रहना चाहते हैं, तो ऐसी जब खुशनुमा माहौल आप दूसरों को देंगे तो मैं समझता हूँ कि एक खुशनुमा माहौल हम क्रिएट कर पाएंगे, और उसके बाद आपकी भी एक पहचान बनती है. विकसित भारत जब हमें बनाना है तो उसमें आपका योगदान बहुत जरूरी है, एक युवा का योगदान बहुत जरूरी है. जिस सब्जेक्ट पर हम बात कर रहे हैं, तो दिल की गहराइयों से मैं मैम का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ICC के बारे में हम बातें कर रहे हैं, और मेरे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर एकता चौधरी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ICC शारदा विश्वविद्यालय से. यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, बातों का जो सिलसिला है लगातार जारी रहेगा. सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ.

0: दे नेड़े होके भी दूरियां रहिंदियां ने, कुछ मोहब्बत अधूरियां रह के भी पूरियां रहिंदियां ने।
1: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी कनेक्ट प्रोग्राम, मेरे यानी

0: लोगन के साथ राबता है, राबता हम कर रहे हैं। हमारे साथ एक खास गेस्ट आप जुड़ी हुई हैं और जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। आपका नाम है डॉक्टर एकता चौधरी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ICC शारदा यूनिवर्सिटी से। मैम, ब्रेक के बाद आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: इस कमेटी से हम समझ पा रहे हैं कि महिलाओं की बातें हो रही हैं, एक लड़की की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है, क्या एक पुरुष की जब हम बात करते हैं तो उसके भी कुछ राइट्स हैं? वो कैसे अपने आप को बचाव कर पाए कि उसके साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है? कभी कभी झूठे केसेस भी आपके सामने आ जाते होंगे, तो मैं इसी बात को आगे लेकर जाना चाहूंगा। तो किस तरीके से, अगर मतलब बात वही आ रही है कि कंप्लेन को आगे लेकर जाए और अगर झूठा केस आ रहा है तो कैसे उस वक्त आप जजमेंट कर पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है?
1: एकदम सही बात है गगन जी। इस केस को जैसे आपने बताया है कि कभी कभी गलत कंप्लेन भी आती हैं, उसके ऊपर भी लॉ है। इट्स नॉट दैट कि मेल्स डोंट हैव एनी राइट। आदमियों के लिए भी होता है कि कई बार अगर किसी ने गलत कंप्लेन कर दी है और अगर बिल्कुल प्रूफ के साथ एंड इट इज प्रूवन, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है प्रूफ करना, क्योंकि इस केस में सारे जो फैक्ट्स हैं या प्रूफ हैं वो रेस्ट्रेंट पार्टी को देनी पड़ता है। पर अगर ऐसा कुछ लगता है कि गलत कंप्लेन आई है एंड वी फाइंड ऑल गेट ऑल द प्रूफ, तो उस केस में वी कैन ऑलवेज हैव अ पनिशमेंट फॉर अ कंप्लेनेंट एज वेल। सो इट गोज एज अ
0: जो शिकायत कर रहा है, अगर उसका गलत पाएगी तो उसको वो दंड का अधिकारी है।
1: इट्स अ मैलफिस कंप्लेन, सो इट गोज एज अ फॉल्स एलिगेशन।
0: यस,
1: तो वो उस केस में फिर हम दूसरी पार्टी को भी कर सकते हैं रेस्ट
0: पनिशमेंट कर सकते हैं। वेरी गुड। इससे पहले जो बात आती है, बात यही आती है कि मैं अपनी कंप्लेंट को कैसे दर्ज करूं, और साथ साथ मैं अब ये समझना चाहूंगा कि ये तो हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, कोई फैकल्टी है तो उसके भी ये राइट्स उसी ICC में ही आते हैं?
1: एकदम बिल्कुल, फैकल्टी के और स्टूडेंट्स के, कोई भी जो भी फीमेल स्टाफ हो या स्टूडेंट हो, कोई भी फीमेल उस वर्क प्लेस के अंदर है, चाहे वो टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो, किसी भी तरीके का एम्प्लॉय हो और कोई भी स्टूडेंट हो, सब ICC के।
0: मैम, आपसे मुझे बहुत सीखने को मिल रहा है, मैं बहुत अलर्ट रहने वाला हूँ इसके बाद, क्योंकि रेडियो इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री ऐसी है कि आप लोगों को देखेंगे, बातचीत करेंगे, उनके बारे में आप बोलेंगे, लेकिन आपको देख के लग रहा है कि नहीं बेटा गगन, अलर्ट हो जाना, पता नहीं कब कौन कोई बात को दिल पे लेगा तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। लेकिन खैर, ये आपको आना चाहिए, एक कला है कि आप कब कहाँ कैसे बात कर रहे हैं। अगर ये सब नहीं आता तो आप सीखिए समझिए, क्योंकि अगर आप सीखेंगे समझेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लग जाएंगे। और सच बात तो ये कि आप इज्जत चाहते हैं अपनी फैमिली की, फिर से मैं वही शब्दों को दोहराऊंगा, तो जब आप इज्जत सम्मान दूसरी महिलाओं को आप देंगे, अपने कुलीग को देंगे, तो निश्चित तौर पर फिर वही बात कि खुशनुमा माहौल आप बनाकर रख पाएंगे। तो मैम, आपकी पसंद का कोई गाना हो जो आप सुनना चाहती हो, सुनाना चाहती हो हमारे लिसनर्स को, क्योंकि ये बहुत एक गंभीर विषय है लेकिन मैं चाहता हूँ कि बहुत हल्के फुल्के अंदाज में हम इसको आगे लेकर चले, तो कोई गाना जो आप सुनना या सुनाना चाहती हो?
1: अपने आप से प्ले,
0: आप अपने आप से। चलिए, मुस्कुराहट भरा एक खूबसूरत गाना मैं आपके लिए प्ले करना चाहता हूँ, मुस्कुराने की वजह तुम हो। सच बात तो ये कि मुस्कुराने की वजह आप यानी कि हमारे लिसनर्स हैं, क्योंकि आपको देखकर ही हमें एक एनर्जी मिलती है। वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और आज जिस सब्जेक्ट पर हम बात कर रहे हैं, कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम के तहत हम राब्ता कर रहे हैं और राब्ता इस प्रोग्राम का नाम है। हमारे साथ जुड़ी हुई है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी यानी ICC की प्रेसाइडिंग ऑफिसर आप हैं डॉक्टर एकता चौधरी फ्रॉम शारदा यूनिवर्सिटी से। तो मैम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल, वेलकम। सो लिसनर्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉलेज वर्कशॉप के माध्यम से, सोशल मीडिया के जरिए और रेडियो वार्ता के माध्यम से स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को, सभी को अलर्ट करता है कि हमारे राइट्स क्या हैं, ये कमेटी किस तरीके से काम करती है, अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी है तो कहां हम जाएं, कैसे अपने ऑफिसर से हम मिलें, कैसे अपनी बात को हम उन तक लेकर जाएं और कैसे कभी कभी ऑनलाइन कंप्लेंट को दर्ज करें। तो इसी संबंध में मैम मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कैसे आपसे कोई कनेक्ट करे, कंप्लेंट दर्ज करे, या आपका ईमेल आईडी या कॉन्टेक्ट नंबर या आपका ऑफिस नंबर कौन सा ब्लॉक है जहां आप लोग, ये हमारा ऑफिस है।
1: अनफॉर्चुनेटली अगर किसी को जरूरत पड़ती है बाय चांस कभी हमारे पास आने की या कंप्लेन करने की, तो इसके कुछ है कि अगर आपको लगता है आप स्कूल लेवल पे पहले अपने हेड को बोल सकते हैं
0: जी,
1: या आप हॉस्टल लेवल पे वार्डन्स को बोल सकते हैं और उनको लगता है कि वो हमारे को फॉरवर्ड कर दें अगर कंप्लेन सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड है तो वो हमारे पास पहुंच जाती है। या फिर जो कंप्लेनेंट है वो डायरेक्टली ICC को भी आके कंप्लेन कर सकता है।
0: ओके।
1: तो ये कंप्लेन जो है किसी भी इंसिडेंट के 3 महीने के अंदर अंदर होनी चाहिए। 3 महीने पहले तक इंसिडेंट हुआ है उसके अंदर विद इन 3 मंथ्स कंप्लेन कर सकते हैं। पर उसके में भी है आपके पास कि अगर आप इनकेस नहीं भी कर पाते हैं और उसके बाद भी करना चाहते हैं तो आफ्टर लुकिंग आफ्टर द फैक्ट एंड अ वैलिड रीजन दिस डेडलाइन ऑल्सो कैन बी एक्सटेंडेड। तो आप 3 महीने के बाद भी कर सकते हैं अगर ICC कमेटी को लगता है कि नहीं बहुत वैलिड रीजन है आपका
0: जी।
1: तो आप उसके बाद भी हम कंप्लेन ले लेते हैं। फिर ICC अपने लेवल पे इंक्वायरी करती है, एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाती है। अगर स्क्रीनिंग कमेटी में उनको लगता है कि कंसीलिएशन या कुछ बातचीत से बात हो सकती है तो हम उस तरीके से उसको लेके जाते हैं। अगर मैटर बहुत ज्यादा है, सीरियस है, और फिर हम पूरी इंक्वायरी कमेटी, पूरी ICC की कमेटी बैठती है, देन फॉर्मल इंक्वायरी कंडक्ट होती है। फिर उसके बाद हम अपनी जो भी हमारी रिकमेंडेशंस होती हैं या आफ्टर द फाइनल इंक्वायरी देन इट गोज टू द VC ऑफिस फॉर द अप्रूवल।
0: ओके।
1: देन आफ्टर द रिकमेंडेशन देन द पनिशमेंट इज डिसाइडेड ऑन दोज रिकमेंडेशंस एंड देन द ऑफिस ऑर्डर्स आर इशूड फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज।
0: इस प्रोसेस को कितना समय लग जाता है?
1: वी एक्चुअली हैव अ डेडलाइन ऑफ 90 डेज। हमें किसी भी इंक्वायरी को करने के लिए वैसे 90 डेज होते हैं, बट वी ट्राई टू काइंड ऑफ गिव जस्टिस या हम किसी भी एक नतीजे पे कोशिश करते हैं कि हम 20 दिन, 15 से 20 दिन में आ जाए।
0: ओके।
1: तो थोड़ा सा ताकि, और इस अगर कुछ ज्यादा होता है तो उस बीच में हम एक रेस्ट्रेन ऑर्डर सा इशू कर देते हैं जो भी रिस्पोंडेंट होता है उसके लिए।
0: क्या कभी ऐसा होता है कि, या ये एक प्रावधान है कि कोई चाहता है कि उसकी जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, वो रिवील ना हो, ऐसा होता है?
1: ICC के जितने भी मैटर्स होते हैं, जो भी ऐसा कुछ होता है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होता है। कभी भी किसी कंप्लेनेंट की आइडेंटिटी अपनी ICC की तरफ से कभी भी रिवील नहीं होती है, कहीं पे भी नहीं जाती। हम जब कभी भी कंप्लेन भी भेजते हैं या UGC में जब हम डेटा भी भेजते हैं तो उसमें भी सारा मास्ट होता है। कंप्लेनेंट का नाम और रिस्पोंडेंट का नाम कहीं जिक्र नहीं होता। इट इज ओनली द ऑर्डर नंबर या केस नंबर के नाम से। तो इट इज एवरीथिंग इज कॉन्फिडेंशियल।
0: ठीक है मैम, कोई ईमेल आईडी जो आप यहाँ जिक्र करना चाहें, कोई ब्लॉक जहाँ ये ऑफिस है?
1: ICC पे अगर कंप्लेन आप डायरेक्ट डालते हैं, वैसे शारदा यूनिवर्सिटी में ग्रीवेंस पोर्टल है, एक ग्रीवेंस पोर्टल के अंदर भी ICC प्लेटफॉर्म है, तो आप वहाँ पे भी डाल सकते हैं। नहीं तो ICC की एक मेल है icc@sharda.ac.in, तो डायरेक्टली कंप्लेन आप उसमें भी भेज सकते हैं।
0: ठीक है,
1: जिसमें मोस्टली वही उसी के थ्रू ज्यादा आती है। और फिर जो इसका ऑफिस है, अगर आप मुझसे मिलना चाहें तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का ऑफिस है ICC का, दैट्स इन डेंटल बिल्डिंग, सेकेंड फ्लोर, रूम नंबर 5।
0: ग्रेट। फाइनली मैम, चूंकि आप एक्सपर्ट हैं, आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, बहुत सारे केसेस आप देखती हैं, जानती हैं, समझती हैं, तो मैं फाइनली एक संदेश आपसे लेना चाहता हूं अपने लिसनर्स के लिए। एक तरफ तो ये काम हो रहा होता है और जो मोरल बातें हैं उनको भी कहीं ना कहीं लोग याद रखें, तो एक मैसेज क्या होगा कि किस तरीके से ये कंप्लेंट्स कम हों, यहाँ तक लोग ना पहुंचें हाँ, अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो लिसनर्स नो डाउट कि आपको पहुंचने की बहुत जरूरत है। मेरा मानना तो ये है कि ये बातें हम जानते हैं, समझते हैं कि बड़ों का अदब करिए, अपने साथी का ख्याल रखिए, किसी से ऊंची आवाज में बात ना करिए, और जिस तरीके से मैंने कहा कि आप अपनी फैमिली का एक सम्मान रिस्पेक्ट चाहते हैं, जब आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो मैं समझता हूँ कि नेचर भी आपके साथ कहीं कुछ गलत होने नहीं देगी। ये मेरा मानना सोचना है। तो मैम फाइनली आपकी तरफ से क्या मैसेज आता है?
1: Actually, there should be zero tolerance for sexual harassment. It is the shared responsibility of all. अगर हम सब मिलके इस चीज को समझेंगे तो कहीं पे किसी भी तरीके की कोई दिक्कतें इस तरीके से आएंगी ही नहीं। अगर हम आपस में ही जो एक जेंडर कम्युनिकेशन गैप है ना, उसको अगर हम फिल कर पाए वो बहुत जरूरी है। हम सोचें कि सब लोगों से हम अपनी तरीके से ही बात कर सकेंगे, सेम जेंडर हमारी चीज को उसी तरीके से एक्सेप्ट करेगा या अब्सॉर्ब करेगा, वो गलत है। अगर हम एक लेवल पे आके उनको भी समझें और उनके तरीके से बात रखें, जैसे कि सीनियर जूनियर

0: एम्प्लॉयज में बहुत होता है.
1: जी जी.
0: सीनियर एम्प्लॉय है, जूनियर है, फीमेल्स प्रॉब्ली अगर आप थोड़ा सा शाउट करते हैं नहीं एक्सेप्ट कर पाती हैं. तो अगर आप वो एक जेंडर गैप को समझेंगे ना तो आप उनको उसी तरीके से हैंडल करेंगे. और जब एक चीज ये चीज आपको आ जाएगी, बिकॉज हर चीज हर तरीके का कम्युनिकेशन सेम नहीं हो सकता. मेल्स हैव अ डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, फीमेल्स हैव अ डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग. तो वो थोड़ा सा वो चीज को हम वर्क प्लेस में अगर अपना ले आए तो ये यहाँ पे खत्म.
1: वेरी गुड, वेरी गुड. यानी कि लिसनर्स, मैंने एक इशारा कर दिया है, नेक्स्ट टाइम ऐसी कुछ हम वर्कशॉप रखने वाले हैं मैम, और आप जरूर रखिएगा वर्कशॉप. और थैंक्स मुझे जरूर बोलेगा, गगन ने मुझे ये इशारा कर दिया कि जल्दी इस पर हम वर्कशॉप करेंगे ही करेंगे. तो मैं यही कहूंगा कि बड़े से बड़े मसले हल हो जाते हैं बात करने से, बात बनती है. मैम का इशारा यही है कि जो कहीं गैप आ रहा है, और आप अपने साथी को जानिए, समझिए उसे क्या अच्छा लगता है. जैसे आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं ना कि मेरा वो दोस्त है वो ये खाता है ये पीता है, उसको छोटी छोटी बातें अच्छी लगती है, छोटी छोटी बात वो नाराज हो जाता है, खफा हो जाता है. पसंद नापसंद का ख्याल रखेंगे तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल हो जाएगा. वक्त का इशारा मुझे कह रहा है कि मैं आपसे अनुमति लूं, तो बस यही कहूंगा कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए. और मेरा फंडा यही है, अगर मैं इस बात का एक समअप करूं या निष्कर्ष निकालूं कि ना टेंशन लेने का ना टेंशन देने का, ये मेरा मंत्र है. क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि लोग टेंशन कहते हैं ना कि लेने का नहीं देने का, नहीं हम कहते हैं कि ना टेंशन लेने का ना टेंशन देने का. मैम बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ आए और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने हमारे लिसनर्स तक पहुँचाई. दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
1: सो लिसनर्स, आप थी हमारे साथ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर आप ICC से डॉक्टर एकता चौधरी. ये वार्ता, ये टॉक आपको कैसी लगी, 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बताएगा. इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं, और जब भी आपको लगे कि शारदा यूनिवर्सिटी के रेडियो FM जाना है तो मुलाकात कर सकते हैं. वक्त का इशारा, मैं हो रहा हूँ 9:11. अपना ख्याल रखिएगा, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM. टाटा बाय, नमस्कार, थैंक यू.

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए
1: ग्रामीण और गरीब तबके के मरीजों के लिए 500 बेड समर्पित किए हैं।
0: अब महंगे इलाज और दवाइयों से मिलेगा आपको छुटकारा,
1: क्योंकि सरकारी अस्पताल की तर्ज पर शारदा अस्पताल में आधारभूत जांचें, दवाइयां, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर की सलाह समेत सभी सुविधाएं मुफ्त दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब, जिसे हम कहते हैं मूत्र। अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थाई होती हैं जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना, विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े, और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे कि ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
0: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: लड़की शहर में नहीं हो, सुंदर हो, क्यूटी लग रही हो, वैसे सिंगल हूँ दिल का भी अच्छा, क्या हस्बैंड ढूंढ रही हो,
1: कुछ भी करा रहा हमसे कहना, यहाँ के डाउन है।

0: हेलो कौन? अरे हम बोल रहे, हेलो कौन? अरे हम बोल रहे, हम बोल रहे, हम बोल रहे, हम बोल रहे, हम बोल रहे।
1: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
2: नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। मैंने टीवी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा, बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको। इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: Dikiri

0: ऑडियो ओवर गो।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा
3: 90.8 एफएम। अरे सुनीता कैसे बा मुनिया?
4: नमस्ते आशा दीदी,
3: सब ठीक बा? साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
4: जी दीदी,
3: जैसे रहुआ कहल रहनी हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी ओके रा के तुरंत साफ करेनी, जैसे के पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे सब के साफ।

0: बस अब ली हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी, मिल के पड़ जा मच्छर बन पर भारी।
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हे गाइस व्हाट्स अप, क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878 9370। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: हर 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: सफाई ही आधा ईमान है,
3: यानी स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है।
2: और ये भी तय है, स्वच्छ रहकर ही हम

0: खाना बनाने से पहले,
1: खाना खाने से पहले,
0: बच्चों को खाना खिलाने से पहले,
1: शौचालय के प्रयोग के बाद,
0: बच्चों के मल को साफ करने के बाद,
1: बाहर से आने के बाद,
0: पशु को छूने और उनके मलमूत्र को साफ करने के बाद,
1: खांसने और छींकने के बाद साबुन और साफ पानी से अपने हाथों को धोएं और हर बार हाथों को कम से कम 40 सेकंड तक धोएं।
0: हमारा भविष्य हाथों में है,
1: हम साथ मिलकर आगे बढ़ें।
0: यूनिसेफ के सहयोग से
1: सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा
0: जनहित में।

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: ओले ओले ओले ओ शोनक। हेलो, कौन?
2: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर, आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
3: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
2: जल्द मिलते हैं।
1: हेलो हेलो हेलो,
4: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
5: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
1: शारदा। हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: Solo Shalva. 94.FM. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: For more information, please call Dr. Ramneet 9878-93-7770. Seats are limited. Hurry up, कहीं देर ना हो जाए।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
1: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University. Beautiful songs, Inqilabi Ziddi from the movie Gandhi Talks, और इसको धुन से सजाया है AR रहमान, vocals Shreya Ghoshal, lyrics Kumar, all on Sunoshada 90.8 FM, Inqilabi Ziddi.

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University. Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हेलो मेरे बेस्ट फ्रेंड टिंकू।
2: हेलो मेरी प्यारी दोस्त तारा।
1: अरे क्या हुआ टिंकू, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो?
2: ओ मुझे बुखार हो गया है। पता नहीं, मैंने तो डॉक्टर को दिखाया ही नहीं है।
1: ओह नो नो नो नो नो टिंकू, बुखार में तेरी पड़ेगी भारी। और तुम तो ऐसी जगह रहते हो जहाँ मच्छर भी बहुत है, हो सकता है मच्छर के काटने से तुम्हें बुखार हुआ हो।
2: ओ हाँ, और कुछ दिन पहले मुझे मच्छरों ने काटा था।

0: अब मैं क्या करूं तारा?
1: क्या हुआ तारा?
2: आ जल्दी आओ अब्बा। टिंकू तुम घबराओ नहीं, सबसे पहले पापा मम्मी से कहो कि तुम्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाएं।
1: और हाँ, किसी झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं बेटा, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना और बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी दवाई मत लेना। ओके? कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है, जिससे अपंगता या मृत्यु भी हो सकती है।
0: ठीक है, मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ। ओके अंकल, बाय बाय।
2: बाय टिंकू।
1: बाय बाय बेटा, टेक केयर।
2: तुम सब भी समझ गए ना?

0: जरूर जाना, जरूर जाना।
1: अगर नहीं समझे तो मैं आऊंगी करने बार, जैसे आई थी पिछली बार।
2: बिल्कुल नहीं, तारा है हमेशा तैयार और ये मेरा आखिरी वार।
1: तुम जीती मैं हारी, तारा तुम हमेशा रखती हो पूरी तैयारी।
2: दोस्तों अब मच्छरों को हराने की बारी तुम्हारी, तो क्या टीम तारा है मच्छरों से लड़ने को पूरी तरह तैयार?
3: टीम तारा है तैयार।

0: हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878933770। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। डेली रेजिमेन के अंतर्गत अब टीबी मरीज को 6 से 8 महीने रोज दवा लेनी होगी। जहाँ पहले एक दिन में कई गोलियाँ लेनी पड़ती थी, आज आपको अपने वजन के हिसाब से मात्र 2 से 5 गोलियाँ ही लेनी पड़ेंगी। और बच्चों के लिए पानी में घुलने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। आप अपना इलाज सहयोगी किसी को भी बना सकते हैं, दोस्त, घर वाले, पड़ोसी या अन्य। तो आइए मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं हल्दी, मेथी और सौंठ का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की 5 समस्याओं से तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं इसके कुछ लाभ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण के क्या क्या फायदे हैं। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे देश में मसालों का भंडार है। घर की रसोई हो या फिर किसी ढाबे और रेस्टोरेंट की रसोई, हर जगह आपको मसालों की खुशबू आसानी से मिल जाएगी। मसालों का कई मिश्रण ऐसा होता है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन मिश्रण में मेथी, हल्दी और अदरक यानी सौंठ का मिश्रण है। मेथी, अदरक और हल्दी के मिश्रण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अदरक, मेथी और हल्दी से सेहत को होने वाले फायदे क्या क्या हैं। बात सामने आती है कि उल्टी और दस्त में किस तरीके से आराम करता है। अगर आपको उल्टी या फिर जी मिचलाने जैसा अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाएं। अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और कई विटामिन्स का संयोजन होता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है, तो हल्दी, मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है। इन मसालों की तासीर भी गर्म होती है जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें। तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है उन लोगों के लिए अदरक, हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नई दुल्हन तो बिल्कुल चांद जैसी है।
2: काकी, आप अपनी टीबी का इलाज तो करवा रही हैं ना?
1: हाँ बेटी, मैं टीबी की दवाइयाँ हर रोज खा रही हूँ। ये दवाई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त मिल रही है।
2: हाँ, अब तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब सरकार टीबी के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ हर महीने 500 रुपए की मदद भी दे रही है, ताकि वो इलाज के दौरान पोषण से भरपूर भोजन ले सके, और ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में आएगी।
1: दुल्हन सुंदर ही नहीं, समझदार भी है।
3: आइए मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं।
4: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया? नमस्ते आशा दीदी, सब ठीक बा? साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
2: जी दीदी,
1: जैसे रहुआ कहल रहनी, हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी, ओकेरा के तुरंत साफ करें, जैसे कि पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे
3: और आसपास कहूँ भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कौनो भी चीज में पानी जमा नहीं होके दे दीदी।
1: बहुत

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: अभियान।
1: इस अभियान का नारा टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं।
2: हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।
1: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: I'm sorry, नमी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे प्लीज माफ कर दो।
6: इट्स ओवर, अब सब कुछ खत्म हो चुका है शेर। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब तुमसे शादी नहीं कर सकती।

0: What is this shit? मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ.
1: So what? मैं काम में बिजी था यार. तुम मुझसे मिलना चाहती थी. मैंने तो नहीं बोला मेरी वेट करो.
0: You know, Shail, it really hurts.

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: तो इस तरह सुपर हीरो जल रक्षक ने पानी बचा के पूरी दुनिया को बचाया।
2: वाओ, जल रक्षक की कहानी तो कमाल है अप्पा।
1: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी। तारा, अब तुम सो जाओ, कल सुबह चमन तुम्हारे साथ खेलने आने वाला है।
2: बहुत मजा आएगा। हाँ।
3: हाय तारा।
2: ओह हाय चमन, आओ मेरे साथ फल खाओ, फिर हम खेलेंगे।
3: मैं बस साबुन से हाथ धोकर आता हूँ।
2: अरे चमन, पानी वेस्ट कर रहा है। लगता है सुपर हीरो जल रक्षक को फिर से पानी बचाना पड़ेगा।
3: अरे तारा, ये क्या?
2: तारा नहीं, जल रक्षक तारा।
4: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी।
2: हर दिन हर व्यक्ति को जितना पानी पीने और खाना बनाने में लगता है, लगभग उतना ही पानी एक व्यक्ति साबुन को हाथ पर या बर्तन पर मलते समय, ब्रश करते समय या दाढ़ी बनाते समय नल को खुला रखने से बर्बाद कर देता है।
3: अच्छा, मैंने तो ये सोचा नहीं था तारा। ओ, मेरा मतलब जल रक्षक तारा।
2: और नलिया पाइप में केवल एक लीकेज से ही हर दिन लगभग उतना पानी बर्बाद हो जाता है जितना एक व्यक्ति एक दिन में घर के सारे काम करने के लिए उपयोग करता है।
3: अरे बाबा रे।
2: आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें शुद्ध पानी नहीं मिलता। जरा सोचो चमन, ये समस्या है कि नहीं? मुझे लगता है ये बहुत बड़ी समस्या है।
3: हाँ तारा, सच्ची ये बहुत बड़ी समस्या है।

0: चलो चमन अब हम खेले।
1: ओके। तारा मैं थक गया हूँ, मैं थोड़ा सा पानी पी कर आता हूँ, ठीक है?
0: पीने का पानी? चमन रुको, हाथ को खड़ी में डुबोने से ये पानी दूषित हो गया है।
2: हैं? लेकिन पानी दिखने में तो बिल्कुल साफ है।
0: पानी दिखने में साफ हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि ये पीने लायक भी हो। पता है कुछ जल स्रोतों जैसे कम गहरे हैंडपंप का पानी भी दिखने में साफ होता है, पर पीने के लिए सुरक्षित नहीं होता।
2: हैं?
0: पानी में जीवाणु, विषाणु या कई प्रदूषक तत्व हो सकते हैं जो आंखों से नहीं दिखाई देते, और दिखने में पानी साफ लगता है। इसीलिए बिना पानी की जांच किए हम नहीं जान सकते कि पानी पीने के लिए सुरक्षित है या नहीं।
3: अरे बाबा रे, तो फिर

0: जरूरी।
1: बात तो ठीक है जल रक्षक तारा, पर पानी की जांच होगी कैसे?
0: चलो चलो अप्पा से पूछते हैं।
2: ओके
3: अब सरकार की ओर से हर ग्राम पंचायत को जल जांच किट दी जा रही है और हर एक ग्राम पंचायत से 5 महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिससे हर महीने अपने पंचायत के सभी जल स्रोतों की जल गुणवत्ता जांच और स्वच्छता निरीक्षण सुनिश्चित हो।
2: वाह अंकल, आप भी जल रक्षक?
3: हमारी पूरी फैमिली ही जल रक्षक है।
4: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी।
2: मैं भी बनूंगा जल रक्षक।

0: पानी में गंदे हाथ या गंदे बर्तन?
1: नो,
2: समझ गया। अब मैं भी जल रक्षक बन गया।
3: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी।

0: लगता है वहां जल रक्षकों की जरूरत है।
1: तुम सब भी जल रक्षक बन सकते हो। आज से अभी से शुरू करो, खुद का पानी खुद निगरानी।
2: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.